मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 34 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच टीएनएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजकर

0: कर 5 मिनट हुए हैं खेती की बातें कार्यक्रम में अरहर की वैज्ञानिक खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम अरहर की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अरहर की सफल खेती के लिए बलुई दोमट व दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर खेत हल्का ढालू है तो ज़्यादा अच्छा है, इससे खेत में पानी नहीं रुकता। यदि खेत में पानी लगता है तो उसके निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। खेत का चुनाव कर लेने के बाद फिर उसकी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। जब खेत जोतने लायक हो जाए, यानी खेत में नमी उपलब्ध हो, तो एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके, 2-3 जुताइयां देसी हल से करके पाटा लगाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद कार्य शुरू होता है बुआई का। बुआई कूड़ों में उर्वरक के बाद करनी चाहिए, ताकि कूड़ में पहले उर्वरक पड़े, फिर उस पर थोड़ा मिट्टी आ जाए और फिर उस पर बीज पड़े। इस तरह की बुआई से अंकुरण के बाद पौधों की जड़ें उर्वरक के सीधे संपर्क में आ जाती हैं और पौधा अच्छी बढ़वार करता है। अब हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि उर्वरक की कितनी मात्रा प्रयोग करनी है। चूंकि अरहर एक दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ें खुद नत्रजन बना लेती हैं, इसके कारण इसे कम मात्रा में नत्रजन देना पड़ता है। हाँ, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता जरूर अधिक होती है, यानी इस फसल को कुल 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में 1 हेक्टेयर खेत के लिए आवश्यकता होती है। इस मात्रा को आप डाइअमोनियम फास्फेट के द्वारा भी दे सकते हैं तथा यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा भी, किंतु अच्छा होगा कि फास्फोरस हेतु सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। इससे ये अतिरिक्त फायदा होगा कि वह सुपर फास्फेट के प्रयोग करने पर 12% सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है, जो कि पौधे की बढ़वार के लिए अच्छा होता है। अतः 1 हेक्टेयर खेत के लिए 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय कूड़ में देना चाहिए। ये तो रही उर्वरक की मात्रा, और अब बीज की बात। अरहर की 2 तरह की प्रजातियाँ हैं, एक तो अगेती और दूसरी देर से पकने वाली प्रजातियाँ। अगेती प्रजातियों में टाइप 21, उपास 120, मानक और पारस प्रमुख हैं। देर से पकने वाली किस्मों में टाइप 7, टाइप 17, बहार, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय विकास और मालवीय चमत्कार, ये सब इसकी उन्नत प्रजातियां हैं। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। टाइप 21 के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस प्रजाति हेतु लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उपास 120 का प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम बीज लगता है। इसके लिए कूण से कूण की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नरेंद्र अरहर 1, मालवीय विकास, मालवीय चमत्कार जो देर से प्रजातियां हैं, इनका 25 से 30 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रहे, बोने से पहले बीज को शोधित अवश्य किया जाए। इसके लिए थियम दवा लेते हैं, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। थियम दवा से बीज शोधन के बाद उसे विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित अवश्य करें। कल्चर का 1 पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अरहर की खेती करनी चाहिए।
0: खेती की बातें कार्यक्रम में अरहर की वैज्ञानिक खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: बीटिंग वेव 240.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में जो आता है, प्रभु श्री कृष्ण उसका कल्याण करते हैं। भक्त कृष्ण भक्ति में भाव विभोर होकर उनकी सच्ची भक्ति में तल्लीन रहता है, उनके प्रेम में मगन रहता है।

अक्षर श्री राम की शरण में जो जाता है, भगवान राम उसकी रक्षा करते हैं, उसके आत्मबल को बढ़ाते हैं, उसके जीवन के कष्टों को हरते हैं और इस भावसागर से पार लगाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम में आज आपने तुलसी कुमार, संजय तलवार, ओम व्यास और मधुबाला चावला के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। आराधना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रस्तुत है विचार बिंदु।
1: लोक हित के लिए किया गया कार्य अंततः अपने ही मानसिक सुख एवं हृदय के शीतल हर्ष का कारण बन जाता है। विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति उतना व्यक्ति

0: कृति नहीं होता जितना कि वह एक लोक कृति, एक समाज का संस्करण होता है। अतः व्यक्ति के निजी कल्याण की स्वस्थ एवं समग्रता मूलक प्रक्रिया है समस्त लोक के कल्याण के आचरण का आरंभ। लोक जब सुखी होगा तो व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सबके सुख की यह शुभकामना लोक कल्याण की ही आधारशिला है। ऋषियों के हृदय की पुकार लोक कल्याण का अभिनंदन कर रही है। जब वे कह उठते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबके सुखी होने, सबके निरोगी रहने, सबकी सभ्यता भरी सुसंस्कृत दृष्टि पर ही हमारे राष्ट्र की मनीषा संतुष्ट नहीं रह गई, अपितु सजगता के साथ आह्वान कर रही है योजनाओं और कार्यक्रमों का। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई दुखी, संतप्त, शोषित, पीड़ित, भाग्यहीन, विपत्ति का मारा न रह जाए, यह है कसौटी लोक कल्याण की। सबके हर्ष उल्लास को लोकार्पित लोक कल्याण का लक्ष्य मिलेगा। कैसे? आत्मा ने हृदय को समझाया है, सह ना भवतु, साथ साथ का रहन सहन विकसित करो। सह नौ भुनक्तु, जीवन और इसका आस्वादन अकेले नहीं, एक साथ मिल बैठ कर लो। वीरता का भाईचारा ही टिकता है। सह वीर्यम करवावही, साक्षी है, दूसरों से द्वेष करने वाला तेजस्वी नहीं रह सकता। लोक और समाज में तेजस्विना वधित मस्तु माँ विदुषावही का ही सारांश है। व्यक्ति लोक कल्याण का ट्रस्टी है। व्यक्ति बिना लोक कल्याण के, बिना जनहित और जनस्वास्थ्य के निजी हित नहीं कर सकता, न ही अपने निजी जीवन को निरोगी रख सकता है। वायरस जब लोक में रोगाणु संक्रमित कर देता है तब संक्रामकता से व्यक्ति आक्रांत हो ही जाता है। अतः व्यक्ति के स्वास्थ्य की गारंटी लोक में पूरे समाज के आरोग्य में ही अंतर्निहित है। लोक कल्याण व्यवहार में कैसे उतरे, व्यक्ति के निजी प्रयत्नों की प्राप्तियों का लोकार्पण प्रक्रिया लोक कल्याण है। भ्रष्टाचार आदि पर भरोसा लोक कल्याण से स्वयं कुचित करता है, जिससे हानि लोक पक्ष की जब होगी तब होगी। लेकिन सर्वप्रथम उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लीवर फेल्योर, किडनी विनाश के रूप में तो जीवित रह लेता है, मरता तो व्यक्ति है। आज जब मानवता इस सदी से नई सदी में प्रवेश करने जा रही है, ऐसे में निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है, अनुभव की जा सकती है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था लोक कल्याण। आलेख एवं स्वर श्री नरेंद्र राम त्रिपाठी का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: नमस्कार श्रोता बंधु, मैं डॉक्टर अनुराधा रॉय, प्रोफेसर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, आयुर्वेद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अर्ली डिटेक्शन, या सबसे पहले उसको कैसे हम जांच करके पता करें कि किसी महिला को जो है वो सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है, तो ये देखने के लिए तीन विधियां हैं। जो सबसे पहला है वो है पैप स्मेयर, दूसरा जो है वो HPV DNA है, और तीसरा VIA जिसको हम कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। ये तीन प्रणाली या पद्धतियां हैं या मेथड्स हैं जो कि बहुत एकदम OPD लेवल पे ही हम ये करते हैं, और महिलाओं को बहुत ही अच्छे से बिना किसी दर्द के सिर्फ ये तीन जांच करके आप बहुत ही इजीली हम बता सकते हैं कि उस महिला को सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है, अगर है तो किस स्टेज में है, ये सारी चीजें बताई जा सकती है। तो ये प्रिवेंशन स्क्रीनिंग कराया जाता है, ये एक स्क्रीनिंग पद्धति है जिसमें सर्वाइकल कैंसर को भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज या एक इम्पॉर्टेंट भूमिका दी गई है। तो ये जो तीन स्क्रीनिंग है, ये 30 से लेके 65 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उन सभी में करीबन सालाना एक बार

0: ये स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूरी है कि किसी भी तरह की जो है वो गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय मुख में कोई किसी तरह की बीमारी, विशेषकर कोई सर्वाइकल कैंसर जो है वो बन तो नहीं रहा है, इसको देखने के लिए। दूसरा जो है नेशनल प्रोग्राम अगर हम कहें तो HPV वैक्सीनेशन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्टेट में अभी कर रखा है, जिसमें बालिकाएं या एडोलसेंट गर्ल जो है उनको HPV वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और ये टीकाकरण जो है वो सभी सरकारी अस्पतालों में जो है ये सुविधाएं उपलब्ध। फिर तीसरा जो है वो आयुष्मान भारत के तहत है, जिसमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स है, जिसमें फिर से स्क्रीनिंग, पॉपुलेशन स्क्रीनिंग करी जाती है। और हर महिलाओं को जो 35 साल के ऊपर की महिलाएं हैं ये स्क्रीनिंग करी जाती है। अब ये जितने भी गाइडलाइंस हैं ये नेशनल गाइडलाइंस फॉलो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WHO कहते हैं, उसका एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी विश्व भर में ये है कि 2030 तक 90-70-90 का गोल है। अब ये 90-70 और 90 का गोल 2030 तक क्या है कि 90% जो जो एडोलेसेंट गर्ल है, जो बालिकाएं हैं, उनमें पूर्ण रूप से टीकाकरण हो जाना चाहिए HPV वैक्सीन का। 70% महिलाओं में स्क्रीनिंग, पहला स्क्रीनिंग 35 साल की उम्र में और दूसरा स्क्रीनिंग 45 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। और तीसरा 90% महिलाओं में किसी भी तरह का अगर गर्भाशय मुख में या सर्विक्स पे कोई भी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट या उसका इलाज, चिकित्सा जो है उनको मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से ये 90-70-90 का ये टारगेट है WHO का, जो 2030 तक हम सबको मिलके पूरा करना है। अब अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय मुख का जो कैंसर है वो 100% जो है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब इससे आप 100% इसको बचाव आप कर सकते हैं। हम लोग सब मिलके इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे? पहला टीकाकरण देके, दूसरा रेगुलर स्क्रीनिंग करवा के, और तीसरा अगर जांच में निकलता है कि सर्वाइकल कैंसर स्टेज में, किसी भी स्टेज में है, तो उसका पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट और फॉलोअप। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर अनुराधा रॉय से ये जानकारी सुनी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत

आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे रवींद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन, दिन 12:45 पर आप सुनेंगे संजय कुमार मिश्रा का गायन और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे शशांक कट्टी का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 गजलें पेश करेंगे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:30 कलाकार होंगी शिल्पी माथुर। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे जैविक खेती और हमारा स्वास्थ्य विषय पर चर्चा। डॉक्टर तरुण वर्मा से सतीश कुमार यादव की बातचीत का विषय होगा मिलावटी दूध की पहचान के तरीके। साथ ही किसान भाई सुनेंगे सरोज वर्मा का गाए लोकगीत। इनके गाए लोकगीत अब दिन 1:45

युववाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात के अंतर्गत विश्व दुग्ध दिवस, नीलम संजीव रेड्डी पुण्यतिथि और वैश्विक अभिभावक दिवस पर चर्चा। युवा साथी सुनेंगे बादल सिंह राज की वार्ता युवा और पर्यावरण संरक्षण। साथी युवा श्रोता सुनेंगे यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। बहने अपना गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगे दिन 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12:00। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित उल्लास बाबट का संतूर वादन। दिन 12:45 पर आप सुनेंगे संजय कुमार मिश्रा का गायन और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे शशांक कट्टी का सितार वादन। गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे सुबह 7:00। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। झंकार सुनिए दिन 10:00। दिन 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। दिन 2:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीत। इसके अतिरिक्त फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:00, शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में, रात 8:15 रस माधुरी में, और गैर फिल्मी गीत और गजलें आप सुनेंगे अंजुमन कार्यक्रम में आज रात 9:30। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस, ये जो मौसम चल रहा है इसमें बस मन करता है कि कुछ ठंडा और जूसी फ्रूट खाने को मिल जाए। और गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में रसीली और मीठी लीची की बहार दिखाई देने लगती है। अपनी खुशबू, स्वाद और रस से भरपूर लीची बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंदीदा फ्रूट मानी जाती है। भारत के कई राज्यों में मिलने वाली लीची सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देने वाला ये फल कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। लीची में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करती है। तेज गर्मी और पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। ऐसे में लीची खाने से शरीर को तुरंत ताजगी महसूस होती है।

यही वजह है कि डॉक्टर भी गर्मियों में पानी से भरपूर फलों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। लीची में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ ही डेली लीची खाने से संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है। और जो लोग वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए भी लीची एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर मौजूद होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। इससे बार बार भूख नहीं लगती और ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम कम हो सकती है। और लीची दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में सहायक होता है। गर्मियों में थकान और कमजोरी महसूस होने पर लीची बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती है, और स्किन केयर में भी लीची काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लीची का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। खाली पेट ज्यादा मात्रा में लीची खाना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसका सेवन करना बेहतर माना जाता है। स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल मानी जाने वाली लीची गर्मियों में शरीर को राहत देने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। ऐसे में इस समर फ्रूट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर गर्मी के मौसम को और भी मजेदार बनाया जा सकता है, और साथ ही अपनी इस सुबह को हम और मजेदार बनाएंगे इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज है सोमवार और तारीख है 1 जून। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में खास। गंगा में नौका संचालन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में रविवार को नमो घाट फेज 2 पर आयोजित कार्यक्रम में 119 नाविकों को कुल 974 निःशुल्क लाइफ जैकेट वितरित की गई। ये अभियान संभावित नौका दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने और जल परिवहन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने नाविकों को लाइफ जैकेट वितरित की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई लाइफ जैकेटों का वितरण जनपद की पंजीकृत नौकाओं को उनकी स्वीकृत यात्री क्षमता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि वाराणसी विश्व के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों में शामिल है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा दर्शन, गंगा आरती, देव दीपावली और अन्य धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के लिए आते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और नाविकों दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि जल दुर्घटनाओं की स्थिति में लाइफ जैकेट जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। उसके उपयोग से व्यक्ति पानी में सुरक्षित रहता है और बचाव दल को राहत और रेस्क्यू कार्य करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। उन्होंने सभी नाविकों और नौका संचालकों से अपील की कि प्रत्येक यात्रा से पहले नौका में उपलब्ध लाइफ जैकेटों की जाँच करें और हर यात्री को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में नाविकों को ये भी निर्देश दिया गया कि नौकाओं में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाया जाए। खराब मौसम, तेज हवाओं, आंधी तूफान, भारी वर्षा और गंगा के जलस्तर में अचानक वृद्धि की स्थिति में नौका संचालन से बचने और प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने को कहा गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ, जल पुलिस, आपदा मित्रों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी सहयोग किया। जिला प्रशासन ने सभी नाविकों से सुरक्षा प्रथम के सिद्धांत को अपनाते हुए सुरक्षित और दुर्घटना रहित नौका संचालन में सक्रिय भागीदारी की अपील की। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा शनिवार को श्रद्धेय माता अहिल्याबाई होलकर का पुण्य स्मरण करते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन और आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धाम परिसर स्थित माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके सनातन धर्म और काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरोद्धार में दिए गए अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कार्यक्रम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। सभी ने माता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करते हुए सनातन संस्कृति के संरक्षण में उनके योगदान को स्मरण किया। न्यास की ओर से कहा गया कि माता अहिल्याबाई होलकर ने सनातन धर्म की लोक चेतना को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में कई बार आए संकटों और विध्वंस के बाद वर्तमान स्वरूप के पुनर्निर्माण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके प्रयासों के कारण ही काशी विश्वनाथ मंदिर को नया जीवन और भव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। मंदिर न्यास ने ये भी स्पष्ट किया कि वो सनातन परंपरा के महापुरुषों और महान मातृशक्ति की प्रेरक गाथाओं को संरक्षित, प्रचारित और जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। न्यास का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सनातन मूल्यों से जोड़ना है। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने माता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को आत्मसात करने और सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्प व्यक्त किया। पूरे आयोजन का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव से ओतपोत रहा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आशापुर सारनाथ क्षेत्र में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास प्राधिकरण बोर्ड के मानस सदस्य अमरीश सिंह भोला रहे। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नशा समाज और परिवार दोनों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज को स्वस्थ दिशा देने के लिए जन जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। रैली में बड़े संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संबंधी संदेशों वाली तख्तियां लेकर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। इस दौरान नशा नहीं जीवन चुने और नशा मुक्त समाज, स्वस्थ समाज जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के सेवन से न केवल स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। खबर अब खेल जगत से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरे वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन के स्कोर पर रोक दिया। जवाब में बेंगलुरु ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। जीत का शॉट स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से निकला, जिन्होंने छक्का लगाकर मैच समाप्त किया। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु को वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने तेज शुरुआत दिलाई। अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाकर टीम को मजबूत आधार दिया। हालांकि इसके बाद देवदत्त पड्डिकल, रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या जल्दी जल्दी आउट हो गए। एक छोर पर डटे विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए। उनकी पारी में कई आकर्षक चौके छक्के शामिल रहे। टीम डेविड ने 24 रन की उपयोगी पारी खेलकर उनका अच्छा साथ दिया। अंत में जितेश शर्मा के साथ मिलकर कोहली ने टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। इससे पहले गुजरात की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और निशांत सिंधु सस्ते में पवेलियन लौट गए। जोस बटलर भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। मध्यक्रम में वॉशिंगटन सुंदर ने संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। उनकी बदौलत गुजरात सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी, लेकिन टीम बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में सफल नहीं रही। बेंगलुरु की ओर से रसीक सलामदार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 27 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार और
जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लेकर गुजरात की बल्लेबाजी पर

दबाव बनाए रखा। लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर बेंगलुरु ने आईपीएल में अपना दबदबा कायम रखा और एक बार फिर साबित किया कि बड़े मुकाबलों में टीम का अनुभव और संतुलन उसे अलग पहचान दिलाता है। तो ये था अपने शहर बनारस और देश दुनिया की खबरें, और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल।

स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इस भीषण गर्मी में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने छत पर, अपने घर के बाहर पानी की व्यवस्था जरूर करें पशु पक्षियों के लिए, और ये करके यकीन मानिए आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। टाटा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला।
1: केवल भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
4: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
3: प्रधानमंत्री

0: ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग, 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना जुड़े।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज अंडरस्कोर GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत आधुनिक

0: और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शशांक कट्टी का सितार पर बजाए राग अहीर भैरव। विलंबित और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबला संगति पंडित जेरी मैसी की है। तो आइए सुने शशांक कट्टी का

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आपने शशांक कट्टिका सितार पर बजाय राग अहीर भैरव सुना। आपके साथ तबला संगति पंडित जेरी मैसी की थी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट

0: ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एवरेज के हिसाब से।
3: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते

0: हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
2: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सजी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने की

0: कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी है, जिसमें बहुत से काबीना वजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिंट के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश

0: तीन तीन, झारखंड में दो और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक एक सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एच डी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट सी वी शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के बीजेडी मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। जिरात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िराअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िराअत से मुताल्लिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे

0: भुट्टे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
1: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब
0: से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
3: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलुकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यू फोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यू फोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनेन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये भी खबरें अब अखबार के आईने के साथ हैं।

0: का त्यागी।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक जेरियाब ड्रोन तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658,
11: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

यह आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम क्रांति, गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष नग में आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म पुकार से। आवाजें किशोर कुमार, आशा भोसले और आरडी बर्मन की। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम अवतार, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, ये कार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा।
1: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जांच उपरांत 4,663 आवेदक आयोजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकर भी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल हैं। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1,00,000 प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS, ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के एवं सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में नवीन मंडी और मंडी परिसर कर्वी, मऊ, राजापुर व मानिकपुर तहसील परिषद समेत

विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन, सीतापुर माफी, पीजी कॉलेज, पहाड़ी ब्लॉक और बड़गर थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गांव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई, इसकी

0: थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई इसकी जानकारी आम जन जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी बांगर चिलौटा मुस्तकिल और रईपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक पंपिंग स्टेशन अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गांव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुंचा, वहां अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ओवर की ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गांवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज 1 विकल्प चुने, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांववार जलापूर्ति, पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
1: अगर कोई विशेष कार्य हो ही आप इस समय बाहर निकले और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें।
2: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
3: मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गांवों में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती हैं। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत 2 मिशन समाधान दिवसों में ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाएं। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो, ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित

0: नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टनिष्ठ हॉस्टल में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की
3: पीडीएम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्रीकांत सिंह ने मूसाखाड़ थाना चकिया जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी अर्पिता दिनांक 24 अप्रैल 2026 सुबह लगभग 8:30 से कहीं गुमशुदा है। कुमारी अर्पिता के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंग गेहुआ है और एक गहरा बदन है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है और इनके लंबे बाल हैं। इन्होंने सफेद रंग की सलवार और ग्रे कलर का सूट पहना है। कुमारी अर्पिता के बारे में यदि आपको कोई जानकारी मिले तो कृपया कोतवाली चकिया जनपद चंदौली से संपर्क करें। श्री सतीश सिंह ने ग्राम जोपा थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी निकिता सिंह दिनांक 19 मार्च 2026 से कहीं लापता है। निकिता सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका चेहरा गोल है, रंग गोरा है और डील डॉल सामान्य है। इन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी है। निकिता सिंह पत्नी श्री सतीश सिंह के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम निकिता सिंह है। श्री मुन्ना चौहान ने ग्राम रामपुर डबहीर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री रंजना दिनांक 13 मार्च 2026 दिन 10 बजे से कहीं लापता है। रंजना पुत्री श्री मुन्ना चौहान के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है और एक गहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है। इन्होंने नीले रंग का पैंट और सफेद रंग का हाफ टॉप पहना है। इनके पाए जाने की संभावना वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में है। अगर आपको रंजना पुत्री श्री मुन्ना चौहान के बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम रंजना है। श्री विनोद यादव ने जीवनाथपुर थाना अली नगर जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी श्रीमती काजल दिनांक 1 अप्रैल 2023 से सुबह 9 बजे से कहीं लापता हैं। श्रीमती काजल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 26 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है और एक गहरा बदन है। इन्होंने हरे रंग की साड़ी और ब्लाउज पहना है और पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। श्रीमती काजल पत्नी श्री विनोद यादव के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया प्रभारी DCRB जनपद चंदौली से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम श्रीमती काजल है और ये दिनांक 1 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं।

0: अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू प्रोग्राम थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
4: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी और मसरूफ तर्ज जिंदगी ने इंसानी जिंदगी को यकसर बदल दिया है, वहीं वालिदैन की जिम्मेदारियां भी पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। सामीन, आज का बच्चा सिर्फ घर और स्कूल तक महदूद नहीं, बल्कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के वसी असरात के दरमियान परवान चढ़ रहा है। ऐसे हालात में वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी औलाद की न सिर्फ बेहतरीन तालीम और तरबियत करें, बल्कि उनकी अखलाकी, दीनी और समाजी रहनुमाई का भी खास ख्याल रखें। दोस्तों, बिलाशुबा वालिदैन बच्चों की शख्सियत साजी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मोहब्बत, शफकत, एतमाद और अच्छे अखलाक के जरिए वो बच्चों को एक जिम्मेदार शहरी बना सकते हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में जहां नौजवान नस्ल मुख्तलिफ फिक्री और अखलाकी चैलेंजेस का सामना कर रही है, वहां वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करें, उनकी ज़हनी कैफियत को समझें और सही और गलत में फ़र्क समझाएं। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाहसे का। मौजू है मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब मौलाना मोहम्मद खालिद बांदवी नदवी साहब, अरबी लेक्चरार दारुलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। मोहतरमा डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ, और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर मोहम्मद खालिद साहब से सवाल है। मौ साहब, पेश करदा मौजू के मद्देनजर मौजूदा दौर में वालिदैन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में क्या किसी तरह की तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है, आप हमारे सामीन के सामने मुख्तसरन इसकी वजाहत फरमाएं।
5: मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले के ज़माने से काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। पहले मसाइल चैलेंजेस वैसे नहीं थे जो आज तेज़ रफ्तार तरक्की याफ्ता दुनिया ने पैदा कर दिए हैं। आज वालिदैन को बच्चों की तरबियत में ख़ास तौर से ये चीज़ें भी शामिल हो गई हैं कि नफ्सियाती एतबार से उनका हौसला बढ़ाया जाए। डिजिटल हिफाजत भी आज की जिम्मेदारी वालिदैन की बन गई है और इसके अलावा भी दीगर तब्दीलियाँ

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सरोज वर्मा। आइए इनसे पहले सुनते हैं ये देवी गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सरोज वर्मा के गाए लोकगीत सुने। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, सरोज वर्मा के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर, और लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन 1:45 पर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है झंकार।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

यह आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम यादों की बारात, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आवाजें हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम चांदनी, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है शिव हरि ने।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच डीआरएम, 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल लैब न्यूज ऑन एआईआर पर। समय है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत का, जिसे आपकी सेवा में लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। नमस्कार। और इन पत्रों के साथ आपकी फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आइए हम आपको बता दें कि यदि आप इस कार्यक्रम में अपना पत्र भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। आपके पत्र आपके गीत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी वाराणसी, हमारा पिन नंबर है 221010 यानी 22 10 10। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आराधना फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत सचिन देव बर्मन का है। और ये गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता राजानगर बजरिया वाराणसी से अनीश अहमद अंसारी, नफीस अहमद अंसारी, मोहम्मद अजीज अंसारी, मोहम्मद शमीम अंसारी, इस्तियाक अहमद अंसारी, शकील अहमद अंसारी और नाटी भाई। महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से हैं पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी, मिट्टी और कुहू। मॉडल टाउन करनाल से सुनीता जैन और सुनीता शर्मा के साथ साथ है सुनीता ढिल्लो। नई सड़क वाराणसी से शाहिद, सद्दू, मलका, मुमताज, इंशा, इली और तारीख। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। अहमदनगर बजरिया से हैं बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, आजन कुमार और मुस्ताक सुलेमानी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलबिंदर बीरक, जैतक बीरक और मीखा बीरक। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतेरेगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झांगवेंद्र कुमार वर्मा और महादेवघाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर और सुजला ठाकुर के साथ साथ ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनिए आराधना फिल्म के इस गीत को।

आराना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और अब आइए सुनाते हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज़ में कर्तव्य फिल्म का गीत। गीत कफील आज़र का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फरमाइश आप सब श्रोताओं की। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल और शिवम जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल और डिम्पल जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से हैं आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल और दुर्गेश जायसवाल, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य जिसमें मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता हैं। तकिया मड़िया हूँ जौनपुर से हैं जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह और मोहम्मद साजिद शाह। अनारकली बाजार जगरगांव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशु मल्होत्रा, प्रदीप पाठक, सुच्चा पाठक और निक्की काका। रिंगनी छत्तीसगढ़।

से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दशमले चौक पर तूर जालान से हैं जयश्री दशमले, शिवानी दशमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और दशमले और काटे परिवार के लोग, और साथ में सुरेश अप्पा, सौरभ और सुधाकर जी। मस्तानपुरा पूर्णाचे से हैं आनंदा भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और इसी गीत के लिए खम्हरिया बिलासपुर से हमें ये पत्र भेजा साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार ने। तो आइए सुनते हैं कर्तव्य फिल्म के इस गीत को।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म बागी से। अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें हैं इस गीत में। समीर का लिखा ये गीत है, संगीत आनंद मिलन का। और सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीजी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। और छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल। इसी गीत के लिए फरमाइश आई अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, ओशन कुमार, बंसीलाल और लब्बी श्रीवास्तव की। संगम नगरी इलाहाबाद से रामप्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रिया गौतम और सौरभ वर्मा का। ये है राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया और खुमेंद्र मसिया। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव और आनंद के साथ साथ सत्यमानंद। ये डबाली बस से हैं बसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान है बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से। दिल्ली शहर मोरी गेट से है कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से हैं मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा। चौरहट नई बस्ती पड़ाव से हैं रोशन अली, सिराज आलम, मोहम्मद समद, रोजी और अलीशा। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। और इसी गीत के लिए फूलपुर इलाहाबाद से हैं रामप्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रिया और सौरभ वर्मा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

बागी फिल्म के बाद आइए सुनते हैं चिच्चोर फिल्म का ये गीत। यशोदास और हेमलता की आवाज़ें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का और पसंद आप सब श्रोताओं की। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। गांव फरासी से हैं राजकुमार डुड्डी और सरजीत सिंह डुड्डी। अंसार नगर नई बस्ती बजड़ीहा वाराणसी से रियाज अहमद अंसारी, सिराज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, इश्तियाक अहमद अंसारी, इम्तियाज अहमद अंसारी और शहजाद अहमद अंसारी। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रंजन रजक राजू,

दिलीप वर्मा और प्रकाश भाई, साथ में हैं पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्य और आपके मम्मी पापा। सुंदरखेड़ा राजमाता नगर बुलडाड़ा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। और इसी गीत के लिए नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से ये पत्र भेजा महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी ने, साथ में है लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, निशा तुलसी गोस्वामी। जतुका किशनपुर से हैं आलम, दिलकश, शहनवाज, नाज, रिजवान, राही, इमरान, रजा, आलम शेख और चांदनी नाज। यवतमाल विदर्भ से हैं हनुमान दास साहू, विशाल राउत। पेनूर सोलतपुर महाराष्ट्र से हैं सचिन गवली, किशोर गवली, बालाजी गवली, सागर गवली। और बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, अंजलि चौहान, ऋतिक चौहान और आशिक चौहान। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। और ये हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, शकील अहमद, सलीम अहमद, शहबाज खान और साथ में हैं बेबी नुसरा खान। और इसी गीत को BLW वाराणसी से शिल्पा, रीमा, प्रीति, सीमा, रीशु, छोटी के साथ साथ मीठी के सहेली रितु सान्याल भी सुनना चाहते हैं, तो आइए सुनाते हैं आपको ये गीत।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत है कुर्बानी फिल्म से। मनहर उदास, कंचन और आनंद कुमार की आवाजें ही इंदिवर का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ देवरी से आरके साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, लेवई से गुलाबदास, दत्तरेगी से भागवत वर्मा, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर, मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, संजना मराठा, मालती चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना, परी खर्चे, ललिता खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, छकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, शाहकुटीर मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल और माया जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से पिंकी जायसवाल, विनोद जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से पूनम जायसवाल और कृष्णा जायसवाल, ग्राम नवागा मुढ़ी पर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहन साहू, श्रीमती रुकमणी साहू, संतोष साहू साहू, श्रीमती शांति साहू, तेदेश्वर टंकेश्वर, कुशाल और तुलेश साहू, ये बड़ी गैबी वाराणसी से अरुण कुमार मालवी, दर्द सरता मालवी, श्री त्रिभुवननाथ मालवी और मंजू मालवी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से हैं नरेंद्र कुमार यादव, छठिया पोखरा डुमराव से हैं सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफाबाद दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, सीतामढ़ी बिहार नाज मंजिल से हैं अक्रम हुसैन प्रिंस बेगम, इशरत अक्रम नवासी, हुमैरा नाज, नाजिया नूर नाज, वसीम अक्रम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, बाबू अमन अक्रम, बच्चू शेख और चीना शेख, शेख टोली समस्तीपुर से हैं मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसरत जहानाज, शाहपुर बघौनी समस्तीपुर से हैं मोहम्मद

مشکور عالم طلعت جہاں ناز. اور ये हैं परली बैजनाथ से मास्टर आरडी फंड अष्टबंधु, और साथ में है सरकार अनुसरया फंड. तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म के इस गीत को.

कुर्बानी के बाद आइए सुनते हैं फिल्म साजन बिन सुहागन का एक गीत। यशोदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, गीत अमित खन्ना का, संगीत उषा खन्ना का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम और जुबेर अब्बासी। इसी गीत को पसंद करते हैं गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। गणोखा लालगंज बिहार से ये गीत सुनना चाह है राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, साथ में है अनिल कुमार अकेला और भड़क चौहान। हरिपुरा झज्जर से इस गीत को पसंद करते हैं प्रदीप बधवा, आशा बधवा, गीतेश बधवा, मोक्ष बधवा और निखिल बधवा। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोध, अंकिल कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एसआर कांगड़ा ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर इस गीत को।

और अब इस कार्यक्रम के आखिर में आरजू फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत है और फरमाइश आप सब श्रोताओं की। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धा नंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और रामजी मौर्य, महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता, मनीष।

सुरेश मरकाम, मोहिनी सिंह, सहेंद्रीबाई, मंजू, मानसी, मनमोहन सिंह और गिरजाबाई मरकाम है डबरीपारा छत्तीसगढ़ से, जमानिया गाजीपुर से उर्मिला जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुमन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बड़भुलई अदलहाट ज़िला मिर्ज़ापुर से ही अब्दुल मजीद, कमालुद्दीन, फिरोज दीवाना, गमादू परवाना, शाहरुख खान, राजा बाबू, पाले खान, जल्लो बेगम, निशा बेगम और असगरी बेगम के साथ साथ लल्लू जी, बाबा बैजनाथ धाम से हैं मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी, बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, साथ में ही गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया, छुपाड़ी छुपाड़ी रोहड़ू से लोभा राम गुंजेटा, जीवंतिका गुंजेटा, अनुज गुंजेटा, मुकुल गुंजेटा, श्रीमती भजन गुंजेटा माताजी और तारक चंद गुंजेटा जी हैं पिताजी। आप सबकी फरमाइश पर आरजू फिल्म का ये गीत।

और आज का ये कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत यही संपन्न करने की दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सखी किरण सिंह को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@CIET.NIC.IN पर अपने संदेश और प्रश्न

0: के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIETNCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIETNCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं,
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में।
1: जी,
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है,
1: बिल्कुल,
2: सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
1: जी,
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
1: जी,
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है।
1: जी,
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
1: जी,
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती।
1: जी,
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी,
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी,
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय

0: के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
0: है। ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी,
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है, तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तर

0: पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी,
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप
1: जी,
0: चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं
1: नहीं
0: समझ
1: सुनेगा
0: पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना
1: बिल्कुल
0: कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते,
1: जी
0: अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल
1: इस्तेमाल
0: करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं।
0: तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
1: जी
0: भाषा
1: जी
0: में,
1: जी
0: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से। उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ की साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो

0: सभागार है, उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए।
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी

0: अणुओं की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है, आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक सीआईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी,
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी,
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से, और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी,
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के

0: लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
8: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। आइए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं शिल्पी माथुर। कार्यक्रम के आरंभ में आपके सुन में प्रस्तुत है मुरली मनोहर मंजुल की ये रचना।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार शिल्पी माथुर। कार्यक्रम में अब आपके स्वर में प्रस्तुत है डॉक्टर बी एन शर्मा की ये रचना

डॉक्टर बीएन शर्मा की इस रचना के बाद कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने मुरली मनोहर मंजुल की एक रचना शिल्पी माथुर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थी शिल्पी माथुर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है गायन। कलाकार है संजय कुमार मिश्रा। राग है शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगति नंद किशोर मिश्रा की।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे संजय कुमार मिश्रा, राग था शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगति नंद किशोर मिश्रा की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो

0: रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले आइए दे देते हैं आपको हम खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये पहली सूचना सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना

के अनुसार संजय पाल, जो प्रेमधारी पाल के पुत्र हैं और निवासी हैं खरगूरपुर थाना जनसा जनपद वाराणसी के। संजय पाल की उम्र है 27 वर्ष, लंबाई 5 फुट 1 इंच के करीब है, रंग गेहुआ है और चेहरा गोल है। ये 9 मार्च सन 2026 शाम 5 बजे से लापता है। घटना वाले दिन आपका पहना हुआ पैंट शर्ट था, और यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना जनसा जनपद वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। और ये अगली सूचना थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार आशीष चौहान, जो पुत्र हैं कमलकांत चौहान के, निवासी हैं चौमना थाना सरकोनी जौनपुर उत्तर प्रदेश के, अस्थाई निवास छित्तूपुर बीएचयू वाराणसी है।

आशीष चौहान की उम्र है 30 वर्ष, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंगोरा और चेहरा गोल है। ये 28 मार्च सन 2026 से लापता हैं। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यहीं संपन्न होती है। अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको दे दें संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा संतूर वादन। कलाकार होंगे पंडित उल्लास बापट। मुशायरे का लुत्फ उठाइएगा रात 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम आपकी सेवा में लेकर आएंगे रात 9:30 पर। लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की गाई चंद गजलों को आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे। शाम 6:30 पर कृषिगत कार्यक्रम में किसान भाई चर्चा के अलावा सुनेंगे बातचीत। विषय होगा मिलावटी दूध की पहचान के तरीके। इस विषय पर डॉक्टर तरुण वर्मा से होगी सतीश कुमार यादव की बातचीत। साथ ही सुनिएगा लोकगीत कलाकार होंगी सरोज वर्मा। इनके गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी ये सुन सकते हैं। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर, जिसमें युवा साथी सुनेंगे आज की बात वार्ता युवा और पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार होंगे बादल सिंह राज। साथ में यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, सूचना जानकारी और भी रोचक जानकारी। कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हम लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। आज सुनेगा भोजपुरी फिल्मी गाने। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 1:15 पर बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जिसमें चर्चा सेहत ज्ञान गीत संगीत के साथ साथ होगी बातचीत नई राह दिखाते लघु गृह उद्योग। इस विषय पर डॉक्टर रेखा सिंह से बातचीत होगी आकांक्षा सिंह की। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरों का प्रसारण होगा बस थोड़ी देर में हमारे लखनऊ केंद्र से। आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा होनहार तलबा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं पूरे नतायज को देख रहा हूँ। खास तौर पर आज यहाँ मुनक्कद तकरीब में जहाँ 223 तलबा को इजाज़त से नवाजा जा रहा है,

0: जिनमें से 85 लड़के और 138 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लड़कियों ने मैरिट हासिल की जबकि लड़कों ने कम मैरिट हासिल की है। ये नंबर बताते हैं कि लड़कियां ज्यादा मेहनत करती हैं और मेहनत के जरिए अच्छे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। ये लड़कियों के लिए भी एक तहरीक होना चाहिए कि लड़कियां घर में अपने खानदान की किफालत करते हुए भी अच्छे नंबर हासिल कर रही हैं।
1: यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
0: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेश नजर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतालिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: दरियस्ता उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत के दाखिली, सलामती, अमन अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वजीर आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी और हुकूमत की तजीहात को पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2015-16 और 2023-24 के दरमियान आदाद व शुमार का मवाजना जाहिर करता है कि रियासत ने सेहत, तालीम, खवातीन को बाख्तियार बनाने, खानदानी मनसूबा बंदी, माँ और बच्चे की सेहत और बुनियादी ढांचे में नुमाया पेशरफ्त की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सेहत खिदमात की तौसी, समाजी तहफ़ की स्कीमों के वसी पैमाने पर नफाज, खवातीन के बहबूद के प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे की तरक्की का असर अब कौमी सतह के सर्वे में भी नजर आ रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज से नाफिजुल अम्ल पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बरामदात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपए फी लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स कम करके 13.50 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अलग थलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरियस्ता वजीर आला ने रियासत के कई अजला के लिए वार्निंग जारी की है। उन्होंने अजला को हिदायत की है कि वो तूफान, बारिश, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए और शहरियों की हिफाजत उसकी अवलियन तरजीह है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: हम आकाश

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएस डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में हमारी बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
0: सखियों के जज्बात,
1: गृह लक्ष्मी।
2: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को सिम्मी का नमस्कार और शीला जी आपको भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार सिम्मी और श्रोता सखियों को भी मेरा यानी कि शीला का प्यार भरा नमस्कार।
2: शीला जी देखिए ना, हम सभी के घरों में प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में दूध का इस्तेमाल रोज होता है। सबसे पहले तो सुबह की चाय बन जाती है दूध की और बचपन से ही हम सभी ये लाइन भी सुनते आ रहे हैं कि दूध रोज पीना चाहिए। इसके पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है।
3: सही कहा आपने, दूध पोषक तत्वों से भरपूर संपूर्ण आहार है। इसके नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियों का विकास होता है और हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि दूध पीने से, दूध का सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, इसमें सारे पौष्टिक तत्व होते हैं।
2: इसीलिए तो जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे दूध जरूर पिलाते हैं, या कहिए उसको एक वर्ष तक तो सिर्फ दूध और दूध के साथ कुछ जो आहार होता है वो देते हैं। और सखियों, दूध के महत्व, पोषण, डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 जून को यानी आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और पहली बार सखियों वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा डेयरी उद्योग की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया था।
3: हाँ, और तभी से हर वर्ष दूध की गुणवत्ता, पोषण के महत्व को बताने के लिए हर वर्ष यानी कि आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस को का आयोजन होता है, है ना?
2: और सखियों, हर वर्ष थीम भी रखी जाती है, तो इस वर्ष की थीम है महिला किसानों का सम्मान। यह विषय डेयरी क्षेत्र की महिलाओं के योगदान, ग्रामीण आजीविका व खाद्य सुरक्षा में उनकी भागीदारी पर केंद्रित है।
3: और भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सखियों, रोजाना के आहार में दूध या दूध से बने उत्पादों को जरूर शामिल करें और सेहतमंद रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बच्चों को ही दूध पिलाएं, हर वर्ग के, उम्र के वर्ग को के लोगों के लिए दूध बहुत आवश्यक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो या बुजुर्ग हो, सभी के लिए दूध बहुत जरूरी है।
2: और हम सभी महिलाओं को तो बढ़ती उम्र में दूध रोजाना जरूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को ना हमारे कैल्शियम की पूर्ति जो होती है। और सखियो देखिए ना, अपना बिजनेस शुरू करना हो या फिर कोई अच्छी नौकरी पानी हो या हमें कोई एग्जाम ही पास करना हो, जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे ना, यानी कि अपनी आरामदायक जिंदगी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी।
3: सही कहा आपने कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं जीवन में। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो इसके लिए नई नई चुनौतियों का सामना भी करना होगा, कुछ रिस्क भी लेना होगा, कई जगहों पर संघर्ष भी करना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत भी करनी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे, है ना सम्मी?
2: भाई, सफलता के लिए मेहनत तो करनी होगी ना, क्योंकि जब हम बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने आरामदायक घोंसले यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो पड़ेगा ही। क्योंकि हम देखते हैं ना अपने आसपास के जीवन में, जो लोग सफल होते हैं वो एक दिन में सफलता नहीं पाते, उसके पीछे उनका लंबा संघर्ष, कड़ी मेहनत होती है। ना जाने वो कितनी रातों को जागे होते हैं, अपने जीवन में कितना रिस्क ले लेके आगे बढ़े होते हैं, तब कहीं जाकर आज वो अपने सपनों को पूरा कर पाए।
3: हाँ, और देखिए आपने घोंसले की बात कही है ना सिमी, तो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में रखती है, लेकिन जब पक्षी छोटे जो छोटे छोटे बच्चे उनके होते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं तभी वो उड़ना सीख पाते हैं। ठीक उसी तरह हम सबको भी अपने आरामदायक आराम को त्याग कर चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
2: हाँ, लेकिन क्या होता है ना, हम जब भी कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं ना, तो लोगों की बातों का तो डर लगता ही है, साथ ही हमें ये भी डर लगता है कि अगर इस काम में हमें सफलता नहीं मिली तो भाई नुकसान बहुत हो जाए।

0: जाएगा। पर सखियो, अगर हार के डर से हमने कुछ नहीं किया ना, तो जिंदगी में जैसा चल रहा है हमेशा वैसा ही चलता रहेगा। और कुछ नया पाना है तो फिर कुछ नया तो करना ही होगा।
1: सही कहा आपने सिमी, कि असफलता से ज्यादा नुकसान होता है कि कोशिश अगर हम नहीं करते हैं। जो लोग अपने डर से आगे बढ़ते हैं वही जीवन में भी आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको कोई नई स्किल सीखने में डर

0: उसके लिए अपनी सोच को भी सकारात्मक रखना होगा, और जो हमें काम करना है या शुरू करना है, सीखना है, उसके लिए नए नए स्किल सीखने होंगे, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फिर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी ना, हम हिम्मत नहीं हारेंगे।
1: सही कहा आपने, क्योंकि एक छोटा प्रयास, हर छोटा कदम आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम आराम की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं।
0: पर सखियो, एक बार में सब कुछ नहीं, ना तो बदलना है और ना ही बदल सकता है। धीरे धीरे छोटी छोटी योजनाएं बनाएं, छोटे छोटे बदलाव लाएं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और चुनौतियों का सामना करना करें, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में हमें असफलता मिले, पर इससे हिम्मत नहीं हारना है, बस इसे भी सीखने का एक हिस्सा माने।
1: तो सखियों, आप खुद से वादा करिए कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे और अपने सपनों को एक तरफ जरूर बढ़ाएंगे, बिना रुके, बिना थके, कुछ इस गीत की तरह।

0: सखियो, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, रुकना बिल्कुल नहीं होता। और कई बार क्या होता है ना कि हम छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना तो चाहते हैं, पर उतनी पूंजी, उतने संसाधन नहीं होते। ऐसे में छोटे सा बिजनेस जो कम लागत में घर से ही शुरू हो सकता है ना, कमाई का एक अच्छा रास्ता तो दिखाते हैं, साथ ही नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यह घरेलू उद्योग हमारे आत्मनिर्भर बनने के सपनों को भी पूरा करते हैं।
1: तो सखियों को एक बातचीत सुनवा दें। बातचीत भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
8: 0542227658।
9: 0542227658।
6: लो अभी फोन लगाता हूँ।
9: 0542227658।
10: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सिमी, देखिए अभी आप महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही थी ना,
0: क्योंकि आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो हमारे सपने पूरे होंगे।
1: सही कहा आपने। तो सखियों को इसी विषय से संबंधित एक बातचीत भी सुनवा देते हैं। बातचीत का विषय है नई राह दिखाते लघु गृह उद्योग। डॉक्टर रेखा सिंह से बात कर रही है आकांक्षा सिंह।
11: सखियों, अक्सर ये कहा जाता है कि हम महिलाओं के पास काम होता ही क्या है। अब भाई, कामकाजी महिला हो या गृहिणी हो, काम की कमी नहीं है हमारे पास। और इन्हीं कामों के बीच हम महिलाएं जो है ना, वो बड़ी सरलता से थोड़ा थोड़ा समय बचा कर अपने शौक को भी पूरा करती हैं। वैसे सखियों, हम में से कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस शौक को थोड़ा सा आगे ले जाकर अपनी उस हॉबी को, अपने उस शौक को उद्योग का रूप भी दे रही हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र भदोही से। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये जो लघु गृह

0: उद्योग हैं वो किस तरह हम बहनों को नई राह दिखा रहे हैं। रेखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, और मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार बोल रही हूँ। और जैसा कि आज हमारा जो विषय है, नई राह दिखाते लघु गृह उद्योग,
0: जी
1: मैं सभी श्रोताओं से, खासकर जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप देखिए, आप लोग हमेशा से घर में जब भी आपके पास समय होता है तो आप उसका सदुपयोग करती आई हैं। चाहे वो घर में अचार पापड़ बढ़िया बनाते समय उसको अपना उत्पाद बनाई हो, या फिर और भी कई तरह के कार्य होते हैं जिसको हम करके अपना एक छोटा सा ही गृह उद्योग स्थापित
0: कर सकते हैं,
1: जिससे कि हम अपनी आमदनी तो कर ही सकें, साथ ही अपने घर में जो हमारे पुरुष सदस्य हैं, जो हमारे घर में आर्थिक अर्थोपार्जन करते हैं, उनको भी हम सहयोग प्रदान कर सकें।
0: जी रेखा जी, समय में थोड़ा पीछे चलें तो एक समय था कि घर में अचार पापड़ बढ़िया, जैसा आपने कहा, ये सब बहुत आयत मात्रा में बनाए जाते थे और न सिर्फ घर के लिए बल्कि आस पड़ोस सभी में बांटने के लिए भी रिश्तेदारों में बंटते भी थे, है ना। धीरे धीरे चलकर इसी को कई महिलाओं ने उद्योग का रूप दे दिया।
1: जी,
0: अगर हम आज देखें तो समय के साथ ये जो घर से किए जाने वाले काम है इनका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें।
1: देखिए, आज जो हमारी महिलाएं हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कुछ ऐसे कार्य जिनको वो नोट करके रख सकती हैं
0: जी,
1: और जिसमें उनका मन लगता हो, उस कार्यों को एक उद्योग का रूप दे करके वो अपना आर्थिक स्तर को सुधार सकती हैं।
0: ये जो समूह बनाने की बात कही आपने, महिला न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने साथ साथ कई और महिलाओं को जोड़कर उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
1: बिल्कुल मैम, ये तो अगर देखिए, महिलाएं ही महिलाओं का सबसे अच्छा साथी हो सकती हैं।
0: जी,
1: अगर वो चाह ले तो वो कोई भी कार्य कर सकती हैं।
0: बिल्कुल रेखा जी, कौन कौन से लघु गृह उद्योग हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न ये आ रहा है मेरे मन में कि जब एक महिला सोचती है कि घर से वो कुछ कार्य करे, सबसे जरूरी जो बात है वो क्या ध्यान रखनी होगी उसे?
1: देखिए मैम, जब भी महिलाएं कोई भी कार्य करना चाहती हैं तो उनके मन में एक सबसे बड़ी हिचक होती है कि हम इस उत्पाद को कहाँ ले जा करके बेचें।
0: जी,
1: बहुत सारे वजह होती हैं, आत्मविश्वास होता है और उनको परिवार के लोग उनको सहयोग भी करते हैं, आमदनी भी उनको देते हैं कि नहीं तुम जाओ और ये काम शुरू करो। उसके बाद भी जब महिलाएं कर लेती हैं तो उनको उस उत्पाद को बेचने की समस्या सबसे ज्यादा विकट रूप में सामने आती है, तो उसमें उनको अपने घर के पुरुष सदस्यों का भी सहयोग चाहिए होगा।
0: जी,
1: जैसे कि मान लीजिए कोई महिला अब स्वेटर बना ले रही है, ऑर्डर कर ले ली है, उसको जिसने एडवांस दिया है वो अपना उत्पाद बनवाएगा और वो लेके जाएगा, लेकिन कभी कभी अगर शौक से कोई चीज बना के रख दी है, अगर वो नहीं बिक रहा है, तो इसमें पुरुष सदस्यों को उनकी सहायता करनी पड़ेगी कि आसपास के जो दुकान है, जो वो लोग ये काम करते हैं, उन वगैरह जैसे बेचते हैं।
0: सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, न सिर्फ पुरुष सदस्य बल्कि घर के हर सदस्य को इसमें हाथ लगाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा बाहर जाती नहीं है और तो इस वजह से उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो पुरुष सदस्य अगर थोड़े से भी उनकी सहायता कर देंगे तो वो बहुत अच्छा कर लेती हैं।
0: बिल्कुल, परिवार के सपोर्ट के बिना तो कोई भी कार्य असंभव ही है। और कौन कौन से लघु गृह उद्योग की बात की जा सकती है?
1: मैम देखिए, एक तो स्वेटर बुनाई हो गया जो इस मौसम पे
0: निर्भर करता है।
1: दूसरा है बैग का निर्माण। जैसे हम लोग देखते हैं बाजार में कि बहुत तरह के बैग सबके हाथों में दिखाई देते हैं, कभी कभी किसी का बैग बहुत अच्छा लगता है देखने में कि कैसे बनाया गया होगा, तो महिलाएं जिनकी सिलाई आती होगी तो वो उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। बैग बना करके वो बाजार में विभिन्न तरह के दे सकती हैं और उससे भी आमदनी ये कर सकती है, यह भी वो स्वयं या समूह बना करके ये कार्य कर सकती है।
0: बिल्कुल।
1: अब मैम जैसे आगे भी है फूल निर्माण। आजकल जो बाजार में आर्टिफिशियल फूल होते हैं इसका भी बड़ा लोगों को क्रेज है,
0: सजावटी फूल।
1: जो हमारे असली फूल होते हैं उनको सुखा करके भी आजकल गुलदस्ते वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये कार्य किया जा सकता है। और जैसे पेंटिंग में भी सूखे फूलों को प्रयोग करके पेंटिंग बनाई जा रही है।
0: जी, और इन सबकी बहुत
1: डिमांड रहती जी
0: इस समय मार्केट।
1: हाँ, जापानी रिबन से नायलॉन स्टॉकिंग के द्वारा भी रंग बिरंगे और भिन्न भिन्न फूल और बुके बना करके इसका व्यवसाय किया जा सकता है। तो देखिएगा मैम, किसी दुपट्टे पे या साड़ी पे या सूट पे जब हाथ द्वारा कढ़ाई की जाती है तो हमको वो आकर्षित करता है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो

0: हम लोग तुरंत पसंद कर लेते हैं, तो महिलाएं यह कार्य भी कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। और हाथ से की गई जो कढ़ाई है या हाथ से बनी हुई वस्तु का
0: हाँ
1: जो मूल्य है
0: जी,
1: वो अधिक मिलता भी
0: मिलता
1: है
0: भी है।
1: और उसकी डिमांड भी रहती है।
0: इसी में मैम, जैसे
1: जी
0: टाई एंड डाई का भी कार्य महिलाएं कर सकती हैं अपने घर पे रह करके, जैसे कुशन कवर हो गया, वो टाई एंड डाई के द्वारा बना के और हल्की सी कढ़ाई
1: यानी कपड़ों को
0: करके,
1: रंग करना।
0: जी कपड़ों को रंग करके, तो ये टाई एंड डाई उसको बोलते हैं, कपड़ों को रंगने
1: जी
0: की विधा है ये, और काफी प्रचलित है राजस्थान में, तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वहां की महिलाएं बहुत दक्ष होती हैं इस कार्य में।
1: अच्छा, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इस
0: हाँ
1: कार्य को आसानी से किया
0: आसानी
1: जा
0: से कर
1: सकता
0: सकती हैं।
1: है।
0: अब जैसे मैम, ये भी आजकल है भगवान जी के वस्त्र बनाना,
1: जी
0: ये भी महिलाएं जिसको इंटरेस्ट होगा वो स्वयं कर सकती है और समूह बना के भी कर सकती है।
1: बिल्कुल
0: जैसे मैम, एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी, दिवाली का समय
1: हाँ
0: तो इसमें विभिन्न प्रकार की दिए बनते हैं,
1: जी
0: मोमबत्तियां
1: जी
0: बनती हैं।
1: जी उसके बाद क्रिसमस और नववर्ष पे मोमबत्तियों
0: जी
1: की मांग तो रहती है, तो मोमबत्तियों में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे डिजाइनर हो
0: हाँ,
1: गई, सेंटेड
0: डिजाइनर हो
1: हो
0: गए
1: गई।
0: मैम, डाइज अलग अलग आते हैं,
1: जी
0: उसका प्रयोग करके महिलाएं अलग अलग आकार प्रकार और रंग बिरंगे मोमबत्तियों का निर्माण कर सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: एक कार्य मैम कर सकती है महिलाएं जो अपने घर से ही, वह है मिठाई का डिब्बा बनाना, तो यह कार्य भी महिलाएं अपने घर में आसानी से कर सकती हैं।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैकेजिंग के लिए जो माल लगता है
0: जी

0: जी
1: इसमें टिफिन सर्विस को भी मैं ऐड कर दे रही हूँ
0: बिल्कुल
1: कि महिलाएं, देखिए बॉम्बे जैसे शहर में तो टिफिन वाला करके एक पूरा ब्रांड बन गया है,
0: एकदम
1: और हमारे तरफ की महिलाएं अभी संकोच में ही पड़ी हुई हैं, तो उनको उत्साहित करने की आवश्यकता है। और मैं चाहूंगी कि जो महिलाएं अपना खाना बनाने में समय देती हैं और जिनको शौक है, वो इस कार्य को अवश्य करें, और जब भी उनके सामने कोई ऑर्डर आता है तो बहुत रुचि से बना के दें, साफ सुथरे तरीके से खाना
0: जी
1: बनाएं।
0: बिल्कुल, कई चीजों का इसमें ध्यान रखना
1: जी
0: पड़ता है।
1: हाँ, और ये टिफिन सर्विस तो बहुत सारी माओं को दुआएं भी देगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अकेले अपने घर से दूर रहते हैं, के
0: घर से दूर घर जैसा खाना मिलना बड़ी बात
1: बड़ी
0: होती है।
1: बात है। जी मैम, तो ये हम लोग महिलाओं को कहेंगे कि वो यह कार्य अवश्य करें।
0: जी बिल्कुल रेखा जी, और साथ ही जब महिलाएं इस तरह का कोई कार्य करने की सोचती हैं तो जो थोड़ा सा आर्थिक नियोजन है उस
1: जी
0: पक्ष पे भी प्रकाश डालें।
1: देखिए मैम, जब हम महिलाओं को सहयोग करने की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना स्वयं सहायता समूह बनाना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के द्वारा वो अपना एक लेबल को रजिस्टर कराएंगी बैंक में,
0: जी
1: वहाँ से जब उनका स्वयं सहायता समूह रजिस्टर हो जाएगा तब उस पे वो लोन ले सकती हैं और अपना कार्य शुरू कर सकती हैं। जैसे मैम मसाले बनाने का ही है,
0: बिल्कुल
1: तो ये कार्य महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं, और जिनको जानकारी नहीं है वो भी कर सकती हैं ये कार्य, और बैंक के द्वारा ये लोन लेके ये कार्य कर सकती हैं, एनजीओज के माध्यम से ये कार्य कर सकती हैं, एनजीओज के पास जाएं और उनसे संपर्क करें, वो लोग भी सहायता प्रदान करते हैं
0: जी
1: महिलाओं के स्वावलंबन के विषय
0: बिल्कुल
1: से संबंधित जो भी कार्य होते हैं। और महिलाएं स्वयं भी अपने घर से थोड़ी बहुत पूंजी लगा करके कार्य शुरू
0: छोटे
1: कर
0: स्तर पे
1: सकती
0: शुरू
1: हैं।
0: किया जा
1: जी
0: सकता है।
1: जी कभी कभी हम लोग बस इस वजह से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं कि कैसे करें और कहाँ से हम पैसे का प्रबंध कर पाएंगे, तो
0: जी
1: ये हिचक जब दूर हो जाएगी और आसपास के अपने क्षेत्र को आप अच्छे से समझ जाएंगी तो आप अवश्य ही कोई ना कोई कार्य महिलाएं शुरू कर सकती हैं।
0: ऐसा कार्य शुरू करके न सिर्फ हम महिलाएं खुद की सहायता करेंगी बल्कि हमारे साथ जो अन्य महिलाएं जुड़ेंगी उनका भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्वावलंबन में हम
1: बढ़ेगा,
0: सहयोग
1: सही,
0: करेंगे।
1: बिल्कुल मैम,
0: रेखा जी, यहाँ पे दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और
1: कारवां
0: कारवां
1: बनता
0: बनता गया।
1: चला
0: तो
1: गया।
0: ये कारवां इसी तरह बनेगा,
1: जी,
0: खुद से
1: और
0: शुरू करके औरों को भी इसमें जोड़ना है।
1: जी बिल्कुल,
0: रेखा जी, आप आई और इस विषय पर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
2: अभी सखिया सुन रही थी बातचीत नई राह दिखाते लघु गृह उद्योग। डॉक्टर रेखा सिंह से बातचीत करी थी आकांक्षा सिंह।
3: सही सिमी, बहुत अच्छी जानकारी थी। और सिमी देखिए, एक बात तो तय है, चाहे हम लाख कोशिश कर लें लेकिन हम स्वयं खुद की देखभाल उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना केयर हमारी माँ किया करती थी, क्योंकि माता-पिता का प्यार इतना अनूठा होता है कि उनकी तुलना दुनिया में किसी चीज़ से नहीं की जा सकती।
2: बिल्कुल, बच्चों के पहला शिक्षक उसके माता-पिता ही होते हैं, और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उचित मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है, क्योंकि वो जैसा अपने आसपास देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। और ऐसे में माता-पिता का जो अनुशासित दिनचर्या होती है उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही हैं जो बच्चों को जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं।
3: सही कहा आपने, ये हर उम्र के मतलब उम्र के हर मोड़ पे माता पिता के दिए गए संस्कार काम आते हैं, क्योंकि इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों से निर्धारित होता है। संस्कार किसी किताब में नहीं मिलते बल्कि ये सीखे जाते हैं अपने घर से, अपने परिवार से और अपने माता पिता से।
2: बिल्कुल, और सखियों इसी के साथ इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, खूब पानी पिएं और धूप में ज़्यादा ना निकलें।
3: और जब भी निकले घर से पानी पीकर भोजन करके ही निकले, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और इन्हीं सब बातों के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, तो आपसे लेते हैं विदा, कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: सखियों के साथ,
2: सखियों की बात,
4: सखियों के जज्बात,
2: गृह लक्ष्मी।
5: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं सरोज वर्मा। कार्यक्रम के आरंभ में प्रस्तुत है ये खिलौना।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार सरोज वर्मा। अभी आपने सुना आपके स्वर में ये खिलौना। खिलौना के बाद कार्यक्रम में प्रस्तुत है सोहर।

अभी आप सुन रहे थे गंगा गीत, कलाकार थी सरोज वर्मा। इसके साथ ही आज का ये लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इनके गाए लोकगीत आप कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। मिड डे न्यूज़ का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई।

0: सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800

0: घरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड

0: आज बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
1: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

भोजपुरी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आज आपकी सेवा में लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। नमस्कार। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित इस कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले आइए आपको बता दें कि किन फिल्मों के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। आज की फिल्में हैं गंगा मैया भर दी अचरवा हमार, लागी नहीं छूटे राम और दुल्हा गंगा पार की। और व्हाट्सएप नंबर हम आपको एक बार फिर से आज बता दें, नंबर है हमारा 7905519981, यानी 7905519981। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हेमलता की आवाज में, एस भास्कर का लिखा यह गीत है, संगीत रविंद्र जैन का। फिल्म का नाम गंगा मैया भर दे अचरवा हमार।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हेमलता की आवाज में ये गीत गंगा मैया भर दे अचरबा हमार से। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें व्हाट्सएप किया उनके नाम हम आपको बताते चलें। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, और रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। ये गांव खारिया डाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से है। सतवीर सिंह बाजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और साथ में है नव्या बाजारनिया जी। ये अशोक प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिवप्रकाश प्रजापति, मुनी प्रजापति, राहुल प्रजापति करौता वाराणसी से। साथ में इस गीत को पसंद करने वाले हैं हमारे श्रोता बटाऊ बीर नगर रामनगर वाराणसी से यशार्थ, केशु, शिवांग, रीशु, नेहा और अनुष्का। दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेश वर्मा और उमेश धनवेश्वरी वर्मा जी। और शाहकुटीर मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल दिव्यांशु विश्वकर्मा। ये छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से हैं एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। गाजीपुर गांव देवरा से हैं अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा और सचिन के मम्मी पापा। और ये हैं रामसकल चौधरी चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से। दतरेगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये हैं वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। कोटवा कपिलधारा सरायमोहन वाराणसी से हैं रतिनाथ त्रिपाठी, राखी, आर्या, एंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति, माताजी निर्मला त्रिपाठी। और रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमशूल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन। लेवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाबदास मानकपुरी, राजादास मानकपुरी और रानी मानकपुरी। सोनवर्षा खानपुर

चुनार जिला मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर, ये कुर्मा जानगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं, दिलदार मीरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मीरे, ये नवागढ़ कटई जिला विमेतरा छत्तीसगढ़ से हैं, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक जीत और पुष्पांजलि वर्मा, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, ये ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा, विशाल मिश्रा बधवा बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से, और ये हैं श्री गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदू गिरी, विशाल गिरी, विकास गिरी, ये मदाना डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से, और ये हैं रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु, प्रीत, प्रांजल, प्रकृति, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, वाराणसी से, ये है मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी और चांदनी कुमारी, ये बगही जौनपुर केराकत से हैं रमाशंकर गुप्ता, रमाकांत यादव, यश कुमार, ध्रुवी और दीक्षा गुप्ता, और ये हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। तो ये गीत आपको पसंद आया और हमारे और श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं, और अब आपको हम आप सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में फिल्म लागी नहीं छूटे राम का ये गीत। गीत लिखा है मजहर सुल्तानपुरी ने और चित्रगुप्त का संगीत है।

लागी नहीं झूठेरा। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में, और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं ने हमें व्हाट्सएप किया। नाम है उनके जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद। और ये रमाकांत गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, रमाकांत यादव, ध्रुवी गुप्ता, दीक्षा गुप्ता हैं बगही जौनपुर किराकत से। ये छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा। ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। राम देवरा से हैं दिनेश चौहान, डांकरी से हैं बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। और ये कटरा मुबारकपुर से हैं जावेद अख्तर अंसारी, निकहत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, समीम अख्तर अंसारी, शाहिद हसन आजमी जी। और दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से हैं जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूब शाह जी। और ये हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ जी। और ये हैं जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से अनस राय, रूबी राय और अनवी राय। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंदार, अभया नंदार, परमा नंदार। जिला बाजार बिहिया आरा से हैं सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी जी। और ये हैं डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर। और एक बार फिर से रामशकल चौधरी जी का चौचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से हमें व्हाट्सएप मिला। और इसी गीत को मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, सुषमा कुमारी, श्रद्धा कुमारी, राजेश और टिंकू कुमार ने भी सुनना चाहा था, तो सुना दिया। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुल्हा गंगा पार का पारके का एक गीत। महेंद्र कपूर की आवाज है, गीत और संगीत लक्ष्मण शाहबादी का। फिल्म दुल्हा गंगा पारके।

दुल्हा गंगा पार के। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीत और संगीत लक्ष्मण शाहबादी का था और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें व्हाट्सएप किया वो हैं गाजीपुर गांव नारी पचदेवा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। शायद इस कार्यक्रम में हमने आपका मैसेज पहले भी शामिल किया था फिलहाल। और ये ग्राम बहुअरा पोस्ट दिलदार नगर जिला गाजीपुर से हैं अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। और ये हैं शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से शानू एस आर आश्विन, शोभना तावस्थी और आपके दोस्त। ये हैं कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निकहत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी और शाहिद हसन आजमी जी। और राम भास्कर दुबे जी का भी हमें व्हाट्सएप मिला चोचकपुर जिला गाजीपुर से। और ये हैं संजीत राय, शौर्य राय, अंबावली कल्याण मुंबई से। और इसी गीत के लिए दानिश जमाल, आसिफ जमाल, आकिब जमाल, सरजीब अनवर जी का भी हमें

मैसेज मिला मुबारकपुर पुरानी बस्ती से, और इसी गीत को कोरासी छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू ने भी सुनना चाहा। और चलिए, अगर कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले भी अगर आपका मैसेज आता है तो हम इसे पढ़ेंगे, और फिलहाल कार्यक्रम का ये एक सुरीला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

पिया निर्मोहिया फिल्म का ये गीत है। गीत विशुधा नंगा, संगीत श्याम सागर का।

और इसी गीत के लिए शाह कुटीर मुगल सराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल का भी हमें मैसेज आया। और ये मुबारकपुर पुरानी बस्ती से शाहिद, दानिश जमाल, आसिफ जमाल, आकिब जमाल और सहजीब अनवर का भी फिर से हमें मैसेज मिला। और इस गीत के साथ ही आज का हमारा ये फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त किरण सिंह को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएस डीआरएम, 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की हमारी ये सभा। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTA, DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुने फिल्म संगीत और ये कार्यक्रम की पहली पेशकश। ये आवाज मोहम्मद रफी की

फिल्म का नाम जीने की राह, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

खयाम के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे नक्श लायलपुरी की रचना। आशा भोसले और किशोर कुमार की ये आवाजें थी। दर्द फिल्म का ये गाना था। कार्यक्रम का ये आखिरी गाना, फिल्म का नाम फकीरा। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, आवाज लता मंगेशकर की। बहुत प्यारा सा गीत, आइए सुनें।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन की ये रचना। लता मंगेशकर की आवाज़ थी। फकीरा फिल्म का ये गाना था। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम फिर लेकर आएंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में, और रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम रात 11:10 तक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 होने वाले हैं। आइए चलें अपने युवा दोस्तों के बीच और सुने उनका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

तपिश बढ़ जाए तो अपनों के साए साए चलो, ख्वाब को भी अपनी हथेली पर उगाए चलो, तरक्की ख़त्म नहीं होती ए

0: एआई के फंसाने से। जो भी लेटेस्ट हो तकनीक वो अपनाए चलो।
1: जी हाँ दोस्तों, विकास के दौर में ना कई नई तकनीकों को अपनाना ना सिर्फ आज की मांग है बल्कि ये हमारी जरूरत भी है,
0: बशर्ते हमें अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। बाकी भूलना तो हमें भी नहीं है ना।
1: मतलब
0: ये कि हमें अपने युवा साथियों को और इन्हें अपनी युववाणी को, वैसे भूलने तो हम देंगे भी नहीं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल मेरे दोस्तों, तफसील से बातें भी होंगी आपसे, लेकिन उससे पहले अपने कार्यक्रम का आगाज तो कर लें।
1: तो रूबरू हो जाइए अपने आज के इन दो रेडियो साथी से, जिसमें मैं हूँ कृतिका और मेरे साथ हैं
0: आपकी वही अतरंगी साथी तैयबा मारूफ। तो कीजिए कबूल हमें और स्वीकारिए हमारा सप्रेम सादर
1: नमस्कार।
0: और आगाज करते हैं कार्यक्रम का आज के इस गीत के साथ।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: 0542227658।
6: दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में, जिसके लिए हम सबसे पहले दूध के उपयोग को समझना होगा कि आखिर इसका यूज क्या है और क्यों।
7: और इसके लिए दोस्तों बता दें, जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि दूध को ना एक अच्छा पौष्टिक आहार और एक अच्छा लिक्विड पेय के रूप में मान्यता प्राप्त तो है ही, और मानव शरीर के लिए इसे बहुत ही सदुपयोगी माना गया है।
6: लेकिन तैयबा जरा सोचो, इसकी शुरुआत कैसी हुई होगी? क्यों हम लोगों ने
7: इसे एक अच्छे सोर्स के रूप में एक्सेप्ट किया, यही ना? तो हाँ। कृतिका तुमने ये सवाल बड़ा ही तार्किक किया है, और मुझे लगता है ना ये उस वक्त रूबरू हुआ होगा जब लोगों के पास खाने के सोर्सेस कम रहे होंगे।
6: मतलब
7: ये कि पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें पाई जाती हैं और उगाई जाती हैं, और वहां रहने वाले लोगों के लिए जो चीज

0: यही ना। तो
1: हाँ
0: कृतिका, तुमने ये सवाल बड़ा ही तार्किक किया है, और मुझे लगता है ना ये उस वक्त रूबरू हुआ होगा जब लोगों के पास खाने के सोर्सेस कम रहे होंगे। मतलब ये कि पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं और उगाई जाती हैं, और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जो चीज़ें उन्हें आसानी से मिल जाती रही होंगी, लोग उसी पर आश्रित होने रह गए होंगे।
1: यानी जहाँ खेती किसानी अच्छी होगी वहाँ लोग फसलों पर डिपेंड करेंगे, और जहाँ नहीं होगी वहाँ लोग घास फूस पर और पशुपालन पर अपना पेट पालेंगे।
0: और वहीं से उनको दूध के उद्भव का, उसके वजूद का पता लगा होगा, क्योंकि जब इसका एक्सेस उन्हें आसानी से मिलने रहा होगा, तो फिर धीरे धीरे लोगों ने इसे अपने आहार का हिस्सा भी बना लिया होगा।
1: वैसे कुदरती तौर पर दूध में विशेषता प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी 12, फास्फोरस, आयोडीन और पोटेशियम पाए जाते हैं।
0: और जब उन्हें न्यूट्रिएंट्स से अपनी ऊर्जा शक्ति का, अपनी एनर्जी का एहसास हुआ होगा, तब उन्हें समझ में आया होगा कि भाई ये तो बड़े काम की चीज़ निकली, बड़ा ही फायदेमंद है ये।
1: आफ्टर ऑल इसमें पाए जाने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स एक मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी जो है।
0: और जहाँ इसकी बात आती है कि ये कितना बेहतरीन है हमारे लिए, तो ये सिर्फ तन के लिए ही नहीं, बल्कि मन और मन के विकास के लिए भी बहुत ही मुफीद, हितकारी और गुणकारी होता है।
1: तेबा, अगर देखा भी जाए तो इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहा है पूरे विश्व पर। तभी तो लोगों ने इसे बड़े ही सहज रूप से स्वीकार भी कर लिया।
0: और कृतिका, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसे लोगों ने किसी भी धर्म, संप्रदाय या कैटेगरी से बिल्कुल अलहदा रखा, ताकि कोई ये न कह सके कि ये सिर्फ इन समूह विशेष के लिए है, जो इसकी महत्ता को और भी बड़ा बना देता है। तभी तो मेरे दोस्तों, इसे एक जीवनदायी पेय के रूप में तस्लीम किया गया।
1: और ये बात इस तरह सिद्ध होती है दोस्तों कि आपने भी देखा होगा कि बच्चों के जन्म के बाद बच्चों को कुछ खिलाने की बात आती है, तो चाहे वो इंसान का बच्चा हो या जानवर के, तो सबसे पहले अहम और करीबी उपस्थिति दर्ज कराने में दूध की भूमिका सर्वप्रथम रहती है, और ऐसे हालात में ये एक जीवनदायी पेय बन जाता है।
0: यानी मुश्किल से लेकर आसान वक्त तक में उन्हें उन दुधारू पशुओं ने ही हमारी मदद की, हमारा सहारा बने, तो उनके योगदान को आज के इस दिन विशेष पर हम भला कैसे भूल सकते हैं मेरे दोस्तों।
1: यानी साथियों, कुछ तो बात होगी, तभी तो सिर्फ सिर्फ हम आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस दिन को, या ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इस खास दिन को खास अंदाज में मना रहे हैं। वैसे भी दुनिया ने चाहे जितनी ही तरक्की कर ली हो, कितनी ही तकनीक का विकास कर लिया हो, यहाँ तक कि दूध के भी विकल्प तलाश कर लिए हो, लेकिन पशुओं से मिलने वाला दूध का विकल्प आज तक नहीं हुआ।
0: हालांकि इसके विकल्प पर बहुत से सफल और असफल प्रयोग किए गए साथियों, 12 कोशिशें की गईं, कुछ विकल्प निकाले भी गए, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं थे। यही वजह है कि इसकी टक्कर, इसका मुकाबला कोई दूसरा विकल्प आज भी नहीं कर सकता। और ऐसे में हमारी मानव पीढ़ी को उनका एहसानमंद होना चाहिए, उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना बहुमूल्य योगदान दिया, हमारा सहयोग किया।
1: और तो दोस्तों, ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का अच्छा स्रोत नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए पूरा उद्योग खड़ा हुआ। तमाम कंपनियों ने दूध और इससे बनने वाले बहुत से प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल कराए
0: और
1: हैं।
0: बस इतना ही नहीं, अभी और सुनिए दोस्तों, कि हमारे देश ने तो दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साल 1970 में क्रांति ही ला दी थी, जिसे हम सब व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, जिन्होंने इसकी पहल की थी।
1: और इनके जन्मदिन यानी 26 नवंबर को हमारे देश में, भारत में, हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आज यानी 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मना रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम भारतीय लोग जो हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। बस अंतर है तो राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय का।
1: लेकिन तारीख बदल भले ही अलग हो साथियों, उद्देश्य तो एक ही है कि मानव जीवन में दूध के पोषण संबंधी महत्व और डेयरी उद्योग के विश
0: डेयरी उद्योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना, यानी दोस्तों ये महज ऐसा वैसा दिन नहीं है। जब आप ही सोचिए कि अगर दूध का अस्तित्व ही ना होता, तो हम दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, मलाई, घी, मावा, चीज, पनीर, बर्फी, कलाकंद, मिल्क केक, रबड़ी, बासुंदी, श्रीखंड, खीर, रसगुल्ला और न जाने क्या क्या, भला ये सब हमें कैसे नसीब होता।
1: बात तो सही है तैयबा, इसीलिए हमें इस दिन को और भी शिद्दत से मनाना।

0: चाहिए। वैसे भी दोस्तों, आज के दिन इतना कुछ अपने अपने आप में समेटे हुए हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि आपको क्या क्या परोसा जाए।
1: लेकिन लेकिन लेकिन मेरे दोस्तों, धीरे धीरे हम हर एक राज से पर्दा उठाएंगे, तब तक आप अपना सस्पेंस कायम रखिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जिन साथियों को मीठे से परहेज है उनके लिए बता दूं मेरे दोस्तों, सब्र का फल मीठा ही नहीं चटपटा भी होता है।
0: बट टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय दिस सोलफुल ट्रैक।

0: तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हमारे राज का पर्दाफाश किया जाए। तो मेरे अजीज सर साथियों, आप सबको विश्व दुग्ध दिवस, वैश्विक अभिभावक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस की खूब सारी बधाइयाँ। अब आप इसमें से किस बात पर अपना मुंह मीठा और चटपटा करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू।
1: तो दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस के हर पहलू पर हमने तो नज़र डाली, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण

0: बस और ग्लोबल पेरेंट्स डे की भी बात हो जाए, तो सबसे पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं कि इसे क्या लगता है, अभिभावक का क्या मतलब होता है।
1: देखो कृतिका, आम तौर पर तो हम अभिभावक का सेंस अपने पेरेंट्स अपने गार्डियंस से लगाते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर कोई ताकत है, यानी सृष्टि की परम सत्ता, परम पिता परवरदिगार, जिसके जरिए ही हम सब हैं और इसी से इस कुदरत का निजाम चलता है।
0: बिल्कुल सही। इसके बाद आती है हमारी प्रकृति, जो हमारी सबसे बड़ी अभिभावक है। आखिरकार अभिभावक तो हम उसी को कहते हैं ना दोस्तों, जो हमारी देखभाल करता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें संकट से उबारता है, हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है, और उसे ही तो हम अभिभावक कहते हैं।
1: इसके बाद वो आते हैं जिन्हें हम रिश्ते में बांधते हैं, और अगर बात की जाए हमारी भारतीय संस्कृति की, तो जो भी हमसे बड़ा है, हमसे वरिष्ठ है, सम्माननीय है, वो अभिभावक ही है। और अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे माँ बाप हमारे अभिभावक होते हैं, जो हमें पाल पोस कर शिक्षित प्रशिक्षित करके उस काबिल बनाते हैं कि हम खुद को अभिभावक होने के लायक बन जाते हैं। फिर अपनी अगली पीढ़ी को अभिभावक बनाने की प्रक्रिया में हम लग जाते हैं।
0: बिल्कुल। और ये एक ऐसी ऐसी स्वस्थ परंपरा है दोस्तों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है और भविष्य में भी जारी रहेगी, जिसके जरिए
1: ये एक
0: एक
1: बेहतर इंसान और देश के लिए अच्छे नागरिक का निर्माण करती है दोस्तों, क्योंकि हम किसी से अच्छे गुणों की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब उसके अभिभावक भी गुणवान हो, और इसी क्वालिटी के जरिए हम अपने अभिभावक के नाम से जाने जाते हैं। तो आज के इस दिन विशेष पर अगर हम अपने अभिभावक को आत्मसात करके ये संकल्प लें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर अभिभावक के तौर पर मार्गदर्शन करेंगे।
0: तब जाकर दोस्तों हम कहीं ना कहीं अपने थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे, क्योंकि ये महज उनके लिए मार्गदर्शन नहीं होगा, बल्कि हमारी देखभाल और संरक्षण भी होगा।
1: तो बस इसी सोच के साथ आज के अगले विषय की तरफ रुख करते हैं, जो आज के दिन को पूरा बना सकता है, क्योंकि हम देश दुनिया की कितनी ही आसमानी बातें क्यों ना कर ले दोस्तों, अगर हम अपनी प्रकृति और अपने पर्यावरण के प्रति संजीदा नहीं है, तो हमारी सब तरक्की निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है।
0: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय, यानी युवा और पर्यावरण संरक्षण की तरफ, जिसमें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज के वार्ताकार हैं बादल सिंह राज।
2: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र बादल सिंह राज, और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है। हमारा आज का विषय है युवा और पर्यावरण संरक्षण। साथियों, पर्यावरण केवल पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों का नाम नहीं है। पर्यावरण वह समग्र व्यवस्था है जो जीवन को संभव बनाती है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, जैव विविधता और संतुलित जलवायु, ये सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, और यदि पर्यावरण संकट में है तो मानव सभ्यता का भविष्य भी संकट में है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल संकट, जैव विविधता के क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं जैसे गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात और जंगलों में लगने वाली आग हमें यह संकेत दे रही है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे समय में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान के परिवर्तनकर्ता भी हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ नदियों को माता, वृक्षों को देवता और पृथ्वी को धरा माता कहा गया है। अथर्ववेद का प्रसिद्ध मंत्र है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह मंत्र हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का बोध कराता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर मनुष्य के लालच को नहीं। आज जब प्रकृति संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, तब गांधी जी का यह विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति को नष्ट कर दे, वह अंततः मानव के लिए ही विनाशकारी सिद्ध होगा। साथियों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट बताती हैं कि हमें अपने समय रहते पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले वर्षों में जलवायु संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव युवाओं और आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल एक सामाजिक विषय नहीं बल्कि पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी आबादी युवा है। यदि यही युवा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले ले तो एक बड़ा परिवर्तन संभव है। युवाओं के पास ऊर्जा है, नवीन सोच है, तकनीकी ज्ञान है और समाज को प्रभावित करने की क्षमता है। यही कारण है कि आज पर्यावरण संरक्षण के हर बड़े अभियान में युवाओं की भागीदारी दिखाई देती है। यदि हम भारत के उदाहरणों की बात करें तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक उदाहरण है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं और ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने तो लोगों को यह समझाया कि जंगल केवल लकड़ी का भंडार नहीं बल्कि जल, जमीन और जीवन के रक्षक हैं। इस आंदोलन ने पूरे विश्व का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार असम के जादो पाएंग, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण के जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अकेले अपने प्रयासों से हजारों एकड़ क्षेत्र में जंगल विकसित कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी प्रकृति के लिए असाधारण योगदान दे सकता है। विदेशों में भी युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्वीडन की युवा पर्यावरणकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक अभियान चलाया। उनके फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन ने लाखों युवा जुड़े, जिन्होंने दुनिया के नेताओं को यह संदेश दिया कि भविष्य की चिंता केवल भाषणों में नहीं बल्कि ठोस कार्यों से करनी होगी। इसी प्रकार नीदरलैंड के युवा वैज्ञानिक बोयान स्लैट ने समुद्र में फैले प्लास्टिक कचड़े को साफ करने के लिए द ओशन क्लीनअप परियोजना शुरू की। यह उदाहरण दर्शाता है कि युवा केवल आंदोलन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। साथियों, पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े अभियानों तक सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में भी जुड़ा हुआ है। घर में पानी की बचत करना, बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करना, प्लास्टिक का कम प्रयोग करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और पौधों की देखभाल करना, ये सभी छोटे छोटे कदम भी मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा पोषित माई युवा भारत के माध्यम से भी वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम, जल संरक्षण जागरूकता अभियान तथा पर्यावरण विषयक जन संवाद आयोजित किए जाते हैं। युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें समाधान का सक्रिय भागीदार बनाना इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है। जब युवा स्वयं आगे बढ़कर समाज को प्रेरित करते हैं तब पर्यावरण संरक्षण एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन आंदोलन का रूप हो जाता है। साथियों, कुछ आंकड़े हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता का और अधिक एहसास कराते हैं। एक परिपक्व वृक्ष प्रति वर्ष लगभग 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। वृक्ष न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं और जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करते हैं। यदि भारत का प्रत्येक युवा प्रति वर्ष केवल एक वृक्ष लगाए और उसकी देखभाल करे तो करोड़ों नए वृक्ष पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। नमामि गंगे अभियान के माध्यम से गंगा नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। काशी समेत देश के अनेक शहरों में युवाओं ने घाटों की सफाई तथा जन जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का अभियान है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने जीवन में ऐसे व्यवहार अपनाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हों। जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कचरे का उचित प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग में कमी, ऐसे उपाय इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने भी देश भर में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का स्वरूप प्रदान किया है। लाखों लोगों ने इस अभियान में भाग लेकर वृक्षारोपण को सामाजिक

0: उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण केवल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन से भी जुड़े हुआ एक विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन चुका है। प्रदूषित हवा के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और अन्य गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण केवल प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक है। युवाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नई सोच और नई तकनीकों को अपनाने में सबसे आगे रहते हैं। आज देश के अनेक विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थी सौर ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती, जल संरक्षण के क्षेत्र में शोध और नवाचार कर रहे हैं। ये प्रयास भविष्य के भारत को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। काशी जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगर में पर्यावरण संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। माँ गंगा की निर्मलता, शहर की हरित विकास और स्वच्छ वातावरण को बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से युवाओं का दायित्व है। जब युवा स्वयं आगे बढ़कर पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भाग लेते हैं, तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन की एक नई धारा प्रवाहित होती है और पर्यावरणीय चेतना जन जन तक पहुंचती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। पर्यावरण संरक्षण भी ऐसा ही एक लक्ष्य है जिसके लिए युवा शक्ति निर्णायक भूमिका निभा सकती है। साथियों, हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस मनाने का विषय नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली जीवन शैली है। प्रकृति ने हमें जल, वायु, भूमि और जीवन प्रदान किया है। बदले में हमारा दायित्व है कि हम उसके संरक्षण में अपना योगदान दें। आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, लगाए गए पौधे की नियमित देखभाल करेंगे, जल और ऊर्जा की बचत करेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमारी आवश्यकता है, विकल्प नहीं। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और समृद्ध भविष्य दे सकेंगे। युवा शक्ति यदि जागरूक हो जाए तो पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: तो साथियों, इस संदेश के पहले आपने सुना बादल सिंह राज के विचार युवा और पर्यावरण संरक्षण पर। उम्मीद करते हैं उनके विचार आपके लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। और आज के खास दिन यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे पर हम सभी संकल्प लें कि हम युवा भी अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति के संरक्षण में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी जरूर निभाएंगे। बाकी बातें तो आपसे और भी होती रहेंगी साथियों, लेकिन उससे पहले क्यों ना आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: इसी के साथ दोस्तों अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अपनी भाषाई पकड़ को मजबूत बनाने के लिए ले चलते हैं आपको अपनी यूथ डायरी की तरफ, जिसमें हमारा आज का हिंदी शब्द है परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब होता है किसी किताब, किसी दस्तावेज या लेख के अंत में जोड़ी गई शेष या अतिरिक्त सामग्री। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कह सकते हैं रिपोर्ट के अंत में संदर्भ सामग्री को परिशिष्ट में जोड़ा गया।
1: और हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है अपैथी,

0: अर्थ है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न और एंथुजियाज्म, यानी उदासीनता या रुचि की कमी। और इसका आप अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, अपैथी टुवर्ड एनवायरमेंटल इश्यूज कैन क्रिएट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम।
1: इसी के साथ दोस्तों हमने जाने आज के यू डायरी के इन दो शब्दों को। अब बात करते हैं अपने परिश्रमी युवा साथियों के रोजगार की खबर, यानी रोजगार सूचना की। तो 18 से 32 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार हेतु एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है।
0: आपको बता दें कि ये भर्ती 12,256 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। साथ ही इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: बाकी इससे जुड़ी जानकारियों के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और विजिट हमें अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स को भी करना है, लेकिन उससे पहले हम कल का सवाल दोहरा देते हैं।
0: मार्च 2026 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस देश के एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला था? मैं एक बार फिर से आपको ये सवाल दोहरा देती हूँ। मार्च 2026 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स किस देश के एयरपोर्ट को सबसे पहला स्थान मिला था? जिसका सही जवाब है सिंगापुर
1: चांगी एयरपोर्ट। तो दोस्तों हमें जिन साथियों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। और संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवार। इसके साथ ही ग्राम खैगांव मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान ने हमें सही जवाब भेजा है। साथ ही मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से भी इन्होंने भी हमें सही जवाब भेजा है।
0: आप सभी दोस्तों को हमारे युववाणी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम आज का प्रश्न सुन लेते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हमारा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
1: तो फटाफट से भेजिए अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिए youth का। और दोस्तों बातें आपसे बहुत करनी है और जानकारियां भी अभी भी आपके साथ हमें साझा करनी है, तो इसी कड़ी में क्यों ना आपको ले चलते हैं हम साल के छठे महीने के पहले दिन के इतिहास की तरफ, जो कि आज के दिन में खास जगह रखता है। तो चलिए इसी कड़ी और इसी घड़ी में शुभारंभ करते हैं और आपको ले चलते सबसे पहले साल 1819 में, जब बंगाल में सीरमपुर कॉलेज की स्थापना हुई।
0: और फिर आज ही के दिन 1835 में कोलकाता मॉडल कॉलेज ने कामकाज शुरू किया। ये तो तैयबा हमें ऐसा कह सकते हैं कि आज के दिन शुभ मंगल दिन रहा हमारे इतिहास में।
1: बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी सुन लो कि भारत सरकार के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ कही जाने वाली भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन सन 1842 में हुआ था, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय समाज में महिलाओं की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान।
0: इसी के साथ 1 जून को भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी अपना एक अहम मुकाम रखता है, क्योंकि 1929 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस का भी जन्म हुआ था।
1: इसी के साथ दोस्तों चूंकि वक्त हो रहा है कि आपसे विदा लिया जाए, आपसे फिर भी बहुत सारी बातें साझा करनी है, लेकिन चलते चलते आपको अंतिम पड़ाव की तरफ ले चलते हैं, जिसमें कुछ पलों के बारे में, कुछ विशेष दिनों के बारे में हमने बात की, शब्दों की दुनिया के बारे में बात की। और इसी कड़ी में हमने आपसे जिस तरह से रूबरू हम हुए अपने आकाशवाणी के माध्यम से, जो हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपका स्नेह ही है जो हमें आप तक पहुंचाता है, आप तक ले जाता है और हम अपने लक्ष्य को आप तक समर्पित कर पाते हैं।
0: इसी सोच के साथ आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, जिसका उद्देश्य युवाओं के नई तकनीकों, उद्योगों और रोजगारों से
1: बदलती जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित भी करना है। साथियों चाहे डिजिटल क्षेत्र हो, तकनीकी शिक्षा हो, सेवा क्षेत्र या रोजगार हो, हर क्षेत्र में कौशल की मांग बढ़ रही है, तो ऐसे में हम युवाओं के लिए जरूरी है कि हम सीखने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। तो सीखते रहिए,
0: आगे बढ़ते रहिए और अपने आसपास के समाज के प्रति संवेदनशील और जागरूक बने रहिए।
1: बाकी नई जानकारी, नए अवसर, नई सोच, यही भविष्य की पहचान है। तो इसी संदेश के साथ दोस्तों वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। बाकी जाते जाते आपकी दोस्त तैयबा हर बार की तरह आज भी यही गुजारिश करेगी कि ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों।

0: अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का भी।
1: बाकी समय का ख्याल रखते हुए अब दीजिए हमें इजाजत, और अपनी रेडियो दोस्त कृतिका को
0: और तैयबा को नमस्कार, जय
1: नमस्कार, जय
0: हिंद।
1: हिंद।

तो ये था युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी और ये है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में शामिल भेलें। एह मौका पर वहां के कहने की दुनिया का सबसे समृद्ध ज्ञान परंपरा आ बौद्धिक धरोहर भारत का पहचान रहली हो। मेधावी छात्र छात्रा लोगिन का सम्मानो वही गौरवशाली परंपरा का विस्तार हो। श्री योगी प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट अलंकारों के बारे में जिक्र कैले।
1: प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रदेश के अंदर 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमने केवल इन विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध करवाई। आज अच्छे क्लासरूम बन गए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए।
0: ए मौका पर वाराणसी, श्रावस्ती और चंदौली के साथ ही कई गो और जिलन में सम्मान समारोहन का आयोजन कैल गैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रदेशवासियों के नाम योगी के पाती जारी कैके विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैले का अपील कैले हमें।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन संस्कृति में वृक्षों, पहाड़ों, नदियों और प्राणियों की पूजा की परंपरा रही है। वेदों में प्रकृति की पूजा को साक्षात ईश्वर की उपासना माना गया है। श्री योगी ने कहा कि हमारी संस्कृति में वृक्ष केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि देवत्व, जीवन, ज्ञान, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के जीवंत प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर वार्षिक औपचारिकता न होकर प्रकृति के प्रति हमारी साझी कृतज्ञता का ज्ञापन होना चाहिए। श्री योगी ने कहा कि सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध पर्यावरण ही विकसित प्रदेश का आधार है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कैले। एगो रिपोर्ट।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतन से प्रेरित भारत में पछिला 12 साल में अभूतपूर्व बदलाव आयल हो। प्रस्तुत बा किसान कल्याण के दिशा में सरकार के ओर से उठावल गईल कदमन पर एगो रिपोर्ट।
4: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को

0: हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आज 6 बरिस पूरा हो गई हो। एगो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह योजना का सराहना कैले हमें। मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में बिहने से लेके 4 जून ले मौसम के शुष्क रहले का संभावना जतौले हो। यही इलाकन में आज कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना बनल बा। ई समाचार बुलेटिन हमने के यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी मौजूद हो। एक सतही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें, आज के शेष और कल यानी 2 जून 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन। रात 10 बजे सुनिएगा मुशायरा, शिरकत करेंगे मोहम्मद इरफान कुरैशी, मोहम्मद मुस्लिम सिद्दीकी, अशफाक अहमद और नसीम अख्तर। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर। मिलावटी दूध की पहचान के तरीके, इस विषय पर डॉक्टर तरुण वर्मा से सतीश कुमार यादव की बातचीत सुनिएगा कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं सरोज वर्मा का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 पर और खेल दर्पण सुनिएगा रात 10 बजे से। ये दोनों कार्यक्रम हम लखनऊ केंद्र से संप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन। अंजुमन की महफिल सजेगी रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे अनूप जलोटा और दिन 12:30 पर संचिता गोस्वामी। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिएगा बातचीत, विषय होगा कृषि यंत्रों की देखभाल कैसे। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं तूफानी चौबे और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं का गाया लोकगीत दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी होगा। युवा दोस्तों की युवाणी सजेगी शाम 5:15 पर जिस

0: होगी आज की बात। अर्णव पांडे का काव्य पाठ, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में सुनिएगा बुंदेली गीत। दिन 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम अंगनैया, जिसमें आप सुनेंगे अजय सिंह से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। इसके अलावा गीत संगीत भी होगा। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन 12 बजे से। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा दिन 11 बजे से, और झनकार की महफिल सजेगी सुबह 10 बजे से। मधुरिमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर, और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा सुबह 6:40 पर। रहिए स्वस्थ और सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुबह 6:35 पर। विचार बिंदु सुनिएगा सुबह 6:30 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनिएगा सुबह 6:10 पर। धान की उन्नत प्रजातियां, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह कार्यक्रम खेती की बातें में सुबह 6:05 पर। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। फिल्म संगीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
0: सबसे पहले आइए सुने उम्मीद फिल्म का ये गीत। आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि। ये रहा

रवि के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे शकील बदायूनी की ये रचना। मोहम्मद रफी की आवाज थी। उम्मीद फिल्म का ये गाना था। एक बार फिर मोहम्मद रफी के साथ चंद्राणी मुखर्जी। फिल्म का नाम जुल्म की पुकार, रचना कुलवंत जानी की, संगीतकार सोनी कोमी।

0: सोनी कौमी के संगीत निर्देशन में कुलवंत जानी की रचना हम सुन रहे थे। चंद्राणी मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। जुल्म की पुकार फिल्म का ये गाना था। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने 98% विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउं लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयो मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिकपत्रे प्रकाशिते लेखे श्रीगोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ 98% शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन

0: से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् PM स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋण प्रदानं वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः येन लक्षशः पथ विक्रेति जनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारम् अकरोत्।

0: पंचो राम राम। सुद्धू
1: भोला
0: भैया तो,
1: भैया
0: हाँ सुद्धू भैया।
1: भाई, देखा हो आज दिखली है कि बड़ा जन हो नेनुआ तोरे खेती में ताजा ताजा एकदम ले के गई
0: हाँ भैया,
1: है और बड़ा लप से बेच के चल ही ले
0: हाँ इस
1: है।
0: समय भाव और जो बाजार है ना, बड़ा बढ़िया भाव ताव मिल जाता भैया, इली बिहाने बिहाने ना उके तोड़ के हम चल जाते बाजारे।
1: अब भाई ठीका करत हुआ देखा, बिहाने बिहाने जो चल जात हुआ ना, मौसम के देखते हुए जो घाम इतना कड़ेर होता है ना, और देखा एक तो लता वाली जो सब्जी होनी ना, वैसे भाई देखा बहुत नरम होनी
0: नरम
1: है ना,
0: होनी, सही
1: अब
0: कहते
1: मौसम तो ऐसा कड़ेर हो जाए, घाम हो जाता तो पता चल कि जो हो लोग लगन उलट पलट के देखा तो कह रहे त्योहार तो जो हो।
0: हो। तुरंते का होला सुद्धू बहना को मुरझा जाला, तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए ठंडे ठंडे जात तोड़ के और एकदम ठंडे ठंडे अपन बाजार डलिया करके तो चलिए आवा
1: माने
0: वापस।
1: खरीदता टाइट बाज
0: एकदम एकदम
1: तार।
0: भैया।
1: अहे देखा हो भोला भैया,
0: हाँ
1: खेती
0: सुद्धू भैया।
1: किसानी हमहन आजू सना करते है ना,
0: कहे ना।
1: समझ ला कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह हमहन का जौन हो, चाहे व्यवसाय कहला चाहे रोजी रोटी कहला है ना, यह बा। और देखा देखा तो हमहन के खेती का व्यवस्था जौन हो कितना परिवर्तित हो गया।
0: कहे ना भैया।
1: पहले देखा हमहन जौन खेती कैल जाए ध्यान होना कि दुआरे पर तीन ठे चटे बर्धा रहे,
0: बर्धा रहे
1: आ वो बर्धा के देखा तनको हड्डी ना दिखाए,
0: ना रहे, उस शान रहे भैया अपने दुआरी का।
1: दुआरी का शान रहा एकदम चिक्कन चिक्कन जौन हो रहे, और लोग कहें कि हे देखा जौन हो इनकर बर्धा जौन हो पूरे गांव में समझ ला कि अलगे दिखा ला।
0: कहे ने भैया, जेकर बर्दा मतलब बरियार रहे, बढ़िया रहे, सुंदर रहे, तो कई कोस ओकर नाम हो कि फलाने के यहाँ देखा। ये देखा और सुद्धू भैया, अपन कहे ना बतावत हुआ कि आपके यहाँ जोन रहला बर्दा दूठे
1: अरे
0: एकदम
1: हम वही का
0: तैयार।
1: बात कर रहे थे, हे देखा हो हमारे तो बर्धा देखा मंगनी भी लोग ले जाए जब हमार काम हो जाए है ना, तो बीचे में भैया लोग कहले रहे कि भाई देखा तैसे दे दिया दो दिन
0: दे
1: बाद दे
0: दिया।
1: दिया, और वो बर्धा खटे और समझ ला कि हमहन भी देखा उनके साथे साथे बर्धा की तरह काम कर जाए
0: कहे ने भाई।
1: जल्ला ना, सबे रहे बिना खराई मरले समझ ला कि निकल जा जाए है। और ओकरे बाद घरेती देखा डब्बा में बंद करके
0: बन के
1: और
0: क्या।
1: गमछा में बांध के लेकर के आवे है ना, पेड़ के नीचे बैठ के देखा खराई मारल जाए,
0: खराई
1: फिर
0: मारल जाए।
1: सोचता है कि फिर लगल जाए वर्धा के साथे है ना, तो वो काम रहल और आज का काम देख ले
0: काम देख ला।
1: है ना। आज तो भाई तू पेड़ के डारी पर बैठ के बांसुरी बजावत हुआ और लेके लोटा जो ना खजड़ी बजाए के जो ना काने में अंगूरी डाल के गावत हुआ, और तुम्हार खेत जोताएगा ट्रैक्टर से
0: जताएगा।
1: कितना फर्क हो
0: हाँ ये
1: है ना।
0: सब।
1: तो कहे का मतलब ये हो कि देखा खेती किसानी में देख ले, चाहे अपने समझ ला कि रोजी रोजगार के जो उद्योग धंधा बा कल कारखाना बा,
0: हाँ भैया
1: बहुत विकास हो गया
0: कहे नहीं।
1: है ना, और वो विकास के साथे साथे हमहन देखा बहुत आगे तक आए गेली। पहले का समय रहल कि हमहन आत्मनिर्भर नहीं रहली
0: ना रली।
1: है ना, अपने समझ ला कि अनाज बदे के हमहन के विदेश पर निर्भर हुए के रहल
0: बिल्कुल भैया
1: और
0: सही
1: वहाँ
0: कहला।
1: से जौन हो आयात हुए, और जौन मोट महीन हमन के खेते में अनाज पैदा हो जाए भाई, वही के खाए पी के गुजारा कर जाए।

0: बाकी तो वह मोट महीन खाए के हमार मोट महीन रहबो कैली
1: रहली
0: मजे का स्वास्थ्य
1: सही
0: जो है
1: बात।
0: बनल रहे।
1: ए भैया हो देखा मोट महीन के बात कहला ना, तब पहले मोट महीन हम लोग खात रहली है तो बीमारी जोन बेरामी जोन रहल ना वो कोसो दूर रहल।
0: दूर रहल है, स्वास्थ्य बढ़िया रहल है। अब तो भाई महीन महीन लोग खात हुआ लेकिन बड़ा मोट मोट होत हुआ। और डॉक्टर भैया के यहाँ जात हो कहते हो, हे डॉक्टर साहब हमार वजन बढ़त चल जात हो,
1: ओके कम करा।
0: कम करा। अब बतावा
1: कौन उपाय बतावा।
0: अब भाई वो समय दिखा जब हम धूरी माटी में रही ना, शरीर पूरा समझ ला कि धुरियाल है। ओकरे बाद आए करके जब नहाए धो करके खाए बैठल जा पलट्ठी मार करके ना, तो क्या आनंद मिले
1: कहे ना भैया,
0: है।
1: जो थकले पे जो मेहनत करके आवा ना भैया, तो खैले का खैका का आनंदे कुछ और होला, दू के बजाय चार रोटी खिया जला हो।
0: और वो समय खाए के दिखा जन मोटा अनाज रहल है ना,
1: हाँ भैया।
0: वह खाएल जाए बाकी तो पच जाए बढ़िया से, अपन शरीर भी स्वस्थ रहे।
1: स्वस्थ रहे
0: और बाकी तो अब ये समय देखा पलत्थी नाही कुर्सी पर भैया लोग बैठे
1: बैठ
0: खात
1: के
0: हुआ,
1: खातू।
0: बाकी तो खाना पचावे के दवाई भी लेत हुआ। डॉक्टर
1: अब
0: साहब
1: बतावा।
0: गैस भी बनत हो है ना, और बिचली भी आवेले। कहे का मतलब कि खेती किसानी के साथ साथ अपने खाए पिए रहे का सहन का भी जो तरीका है देखा वो भी परिवर्तित हो गल।
1: परिवर्तित हो गया कहे ना भैया।
0: अब वो परिवर्तन के साथे साथे अपने जौन खेत का माटी हो देखा ओमन भी परिवर्तन आए गल।
1: परिवर्तन आ गया सही कहला
0: अब
1: भैया।
0: डॉक्टर भैया लोग का कहत हुआ जन किसी विज्ञानी हुआ कि भाई जौन खेती के तरीका वो समय कैल गल रहल कि भाई वो समय हमान के अपन अनाज में वृद्धि करे कर रहल
1: वृद्धि
0: उत्पादन
1: करे
0: में,
1: हाँ
0: जिससे आत्मनिर्भर हुई
1: आत्मनिर्भर हो ताकि
0: बाकी
1: उत्पादन ज्यादा हो।
0: ज्यादा हो। बाकी अब समय ये आ गल हो कि आत्मनिर्भर तमन हो गल ही, बाकी जौन खेती का माटी हो ना वो देखा दूषित हो तो।
1: दूषित
0: अब
1: होता।
0: ओकरे बदे वह डॉक्टर भैया लोग कहत हुआ कि नहीं अब जैविक खेती करे के जरूरत हो।
1: अब जैविक खेती की ओर देखा भैया लोग,
0: हाँ
1: कह के अपने जो माटी का जो क्षमता है उर्वरक क्षमता हो ये एकदम मृत हो जाता, खत्म हो जाता।
0: बिल्कुल सही कहत हुआ। तो भाई जौन अपने माटी का क्षमता हो ओके बनौले रहे बदे के ये बात बहुत जरूरी हो कि अब जौन हो जैविक विधि से खेती करा।
1: कहे ना भैया।
0: और जैविक विधि से खेती के लिए देखा है एक बात यह हो ना कि जौन अपन आर्थिक रूप से जौन खर्चा होला ना पैसा देखा वो तो बची ना हो, दवाई तो बड़ा महंग महंग आवाला
1: कहे
0: है।
1: ना सुधु भैया। अ देखा सुधु भैया, ये खेती में ना रासायनिक खाद और कीटनाशक का जोन जगह होला
0: हाँ
1: ओकरे जगह देखा गोबर का खाद होला अपन और कंपोस्ट होला, हरित खाद होला और जैविक जोन एके हम लोग अपने खेते में इस्तेमाल करके अपने खेत का उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकल जाला और अपन जोन उत्पादन हो वहू के बढ़ावल जा सकला।
0: अरे भाई हे देखा जौन कंपोस्ट खाद के बात करत हुआ, हरी खाद है ना और गोबर वाली खाद हो,
1: हाँ सुधु भैया।
0: केचुआ वाली बर्मी कंपोस्ट हो, भाई ये कुल खेती में डलले से जौन हो अपने खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ल है। कहें से कि जीवांश का मात्रा बढ़ल
1: कहे ना भैया।
0: है ना। और जौन हमन रासायनिक खाद का प्रयोग करीला उसे का हो कि देखा जौन मात्रा तत्व का कम हो
1: कम हो
0: भाई वह मात्रा मिली
1: उहे मिलेला
0: है ना।
1: सही
0: और
1: कला।
0: ऐसे एक समझ ला कि संतुलित रूप से पूरे खेत का जौन हो उर्वरा शक्ति बढ़े जल ना। तो हमें विज्ञानी सलाह जौन भैया लोग देना भाई ऊपर चले के जरूरत हो, जैसे कहना उत्पादन बढ़ाओ बदे के भाई रसायन आयल तो हमें रसायन का प्रयोग कर ली। अब उन्हें कहा तुम्हें कि जैविक खेती करा तो जैविक खेती कर
1: जैविक की
0: लिए
1: वजह तो,
0: चल ना।
1: हाँ तो
0: अब
1: सुधु भैया जानत हुआ जैविक खेती कैले का अपन एक आनंद हो, एक फायदा हो। वो फायदा का हो देखा, जैविक विधि से जब अपन फसल उगावल जाई चाहे वो अनाज होके चाहे फल हो, वो देखा ओमन मिठास होला और
0: अरे
1: साथे साथे वो अपने स्वास्थ्य के बदे
0: हाँ
1: बहुत सुरक्षित होला, ओकर कौनो दुष्प्रभाव ना होला।
0: बिल्कुल लाई पड़ा शरीर पर। हम कही के देखा जब तुहार माटी स्वस्थ रही तो उस स्वस्थ माटी में जौन तू अनाज लगेबा चाहे पेड़ पौधा
1: ओहो स्वस्थ
0: लगेबा वो
1: हुई।
0: स्वस्थ हुई और वह उत्पादन हमारे तोरे शरीर में जाला
1: जाता
0: है ना, तो हम तू तो स्वस्थ रहबे न करब।
1: बिल्कुल। अर्जुन अभी हमन आप बतौला है कि ऐसे मनुष्य मोटा हो जात हुअन, मनई मोटा हो जात हुअन, डॉक्टर डॉक्टरी खिया डॉक्टरी भैया खिया जात हुअन, तो ई जैविक जोन विधि से जोन फसल उगावल जाला ऐसे देखा मनुष्य का जो शरीर अपन मनई का एकदम स्वस्थ रहला और अपन जो आए वाला जो समय हो
0: हाँ
1: वो भी विकास की ओर आगे बढ़ेला।
0: बिल्कुल सही कहा हुआ। और एक बात हो ना कि जे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और वो खोजत हो कि जैविक विधि से उत्पादन कहाँ मिलत हो
1: कहाँ मिलत
0: है
1: हो।
0: ना, सब्जी भैल और चाहे तो और जौन भी अनाज वाली फसल हो वो चार पैसा बेसी दे के ले जाते हो, भैया हमसे पैसा भले बेसी लेला बाकी तो हम शुद्ध चीज दा।
1: कहे ना भैया।
0: जैसे भाई हम कही कि दवाई में पैसा खर्चा हो तो हर समय

0: अपन खेती किसानी नुकसान हुई,
1: सब
0: इससे
1: हुई
0: बढ़िया हो कि खाए पापा शुद्ध चीज ला,
1: शुद्ध ला, सही
0: शुद्ध
1: बात
0: हवा
1: हो,
0: ला, शुद्ध पानी ला, है ना।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा जैविक विधि का एक जौन हो फायदा और बना कि
1: का
0: अपन
1: भैया
0: पर्यावरण एकदम शुद्ध रहला, है ना। काहे से जौन भी हमन कीटनाशी वगैरह छिड़काव करीला अपने पर्यावरण में भी समझ ला कि कुछ ना कुछ उड़ के ओकर मात्रा जाले, तो
1: हाँ
0: उतना
1: भैया
0: दूर जौन हो प्रदूषण फैलला,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: फिर ले रहा।
0: तो कीटनाशी जौन प्रयोग होला ऊपर भी देखा नियंत्रण जैविक विधि से करे के जरूरत हो।
1: और शुद्ध भैया जैविक विधि से ना देखा अपन माटी में जो पोषक तत्व हो तो बढ़ेला ही, साथे साथे अपन जलवायु हो, जमीन हो, वायु प्रदूषण, ए भी ए पे भी नियंत्रण रहला।
0: एकदम एकदम सही कहत हुआ। और जब
1: और
0: पिए वाला पानी है तो देखा वहीं भी चापाकल कुल जगह नहीं हो, अब वहीं भी बहुत जगह लोग जौन हो कुइयाँ का पानी पिए ना,
1: पिए लो
0: तो ढक के रख ले हुआ साफ सफाई करके।
1: कहे ना।
0: बाकी तो ये जौन छिड़काव वाली दवा हो ना, कबो कबो होला का कि खेती से जौन है ना मूस छेद कर देना कुइयाँ में चट बा,
1: कुइया में चल
0: और
1: जाना,
0: देखात भी नहीं तो है, और भीतर भीतर पानी रिस करके समझ ला कि कुआं में जाता हो,
1: कुआं
0: है
1: जाता।
0: ना। तो वो जहरीला पानी जाके के कुआं में देखा प्रदूषण कराला, और ओके अगर हम तू पी तो निश्चित हो कि स्वास्थ्य बजे के नुकसान करी,
1: बिल्कुल करी
0: है ना।
1: भैया।
0: तो ये सब अगर सतर्कता रख करके खेती किसानी कैल जाए, डॉक्टरी भैया लोग जो हुआ वो विज्ञानी भैया लोग कृषि विज्ञानी उनका सलाह लेके काम करा, तो निश्चित रूप से अपन खेती का माटी भी ठीक रही,
1: ठीक रही
0: हम तू भी स्वस्थ रह, खेती किसानी एकदम मन मनसायन से हुई हो,
1: कहने भैया,
0: हरा भरा
1: जब
0: बनल रही।
1: जब हमन स्वस्थ रहल जाई तबे तो अपन किसानी मजबूत हुई।
0: बिल्कुल। तो हम कही कि हम तो कहब कि देखा जागरूकता यही मही में बा कि अपन खेती किसानी बदे के, अपने बाल बच्चे बदे के,
1: बदे
0: पशु
1: के
0: चौवन बदे के, अपन खेती किसानी कैसे करा,
1: जैविक विधि से,
0: जैविक विधि से करा, है ना।
1: बिल्कुल
0: अरे
1: भैया।
0: ललन भैया के देख ला है, वो देखा पशु चाट धैले हुआ, समझ ला कि दूध भी पियत हुआ
1: दूधो पियत
0: मजे का,
1: हो।
0: दूसरे के भी बेच के बढ़िया पैसा कमात हुआ, और जौन गोबर होत हो ना गोबर गैस का बैठा लेले हुआ
1: गोबर गैसों का, और जो ओकरे
0: प्लांटों
1: बाद
0: का,
1: अवशेष और जो बचा था ओके अपने खेते में उल्टवा देते
0: उसे
1: हूँ।
0: गैस जो निकलत हो ना बत्ती भी जरावत हुआ, उसे उनके यहाँ खाना भी बनत हो, और जौन अवशेष पदार्थ होकर निकलत हो खेते में छिटवा देत हुआ,
1: बतावा
0: जल्ला मन एकदम उनकर गदगद रहला। और जे
1: गदगद
0: जाला बड़े शौक से दिखावा ना कि देखा
1: दिखाऊं
0: यह व्यवस्था हम
1: ए
0: कैले है
1: ए
0: वो,
1: ए शुद्धू भैया, जे भी उनके दाढ़ी से जाला ना, उनकर
0: हाँ
1: खेत के निहारते जाला।
0: निहारत जाला, तो देख ला
1: भाई
0: ये जैविक
1: मेहनत भी
0: विधि का ही
1: करें ना।
0: प्रभाव
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल कहे ना भैया।
0: तो हे भोला भैया
1: हाँ शुद्ध
0: हम
1: भैया
0: कही कि देखा खेती किसानी तो हम आगे भी वही करब,
1: बिल्कुल।
0: बाकी तो कुछ संदेश पंच भैया लोग सुन ले ओकरे बाद।
1: हाँ सुनवा दे भैया।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: जो देखा भाई संदेश तो हो गल, अब अपने खेती किसानी की तरफ हम चलत है,
1: बिल्कुल
0: और
1: चला
0: खेती
1: जाए।
0: किसानी बत कही होता ना देखा जैविक खेती का। जैविक खेती जो है पूरी तरह से समझ ला कि अपने जौन जानवर हुआ है ना, पशु हुआ उनके ऊपर निर्भर हो,
1: निर्भर हो
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: अब पशु होना अनबोलता,
1: अनबोलता
0: हम तो है उनका ध्यान रखे की जरूरत हो, कैसे ऊ हमारे तुहार ध्यान रखत हो,
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो हम कहें कि जौन देखा दूध आजकल तो भाई हर बैल का खेती ना रह गया,
1: ना
0: अब
1: रहेगा।
0: दुधारू पशु हो, है ना। तो ये दूध जौन हो ना देखा कत्तू कत्तू देखे में आवला कि भाई उम्र भी मिलावट कर देते हुआ भैया लोग
1: बिल्कुल
0: अपने
1: भैया
0: व्यक्तिगत लाभ बदे के, है
1: कहे
0: ना।
1: ना,
0: अपन फायदा तो देखत हुआ, बाकी समाज का, परिवार का, गांव का, देश का जौन फायदा ना देखत
1: ना
0: हुआ,
1: देखत
0: है
1: हूँ।
0: ना। तो हम कहीं मिलावटी दूध अगर हो तो ओकर पहचान कैसे करें, का तरीका हुए, ये विषय पर डॉक्टर तरुण वर्मा से सतीश कुमार यादव को बात कही हो, है ना। पंच भैया सुना ध्यान से।
4: आज हमने लोन के बीच में आयल हैंड डॉक्टर तरुण।

0: वर्मा जे की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब से आज हमने लोग जानल जाए मिलावटी दूध से कैसे बचल जा और ओकरा बदे का सावधानी रखे के हुई। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका हमने की कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
1: धन्यवाद सतीश जी आकाशवाणी का।
0: तो डॉक्टर साहब हमारी पंच भैरों के आप ये बताएं कि मिलावटी दूध होला का और ये काहे बदे या कैसे ही खतरनाक है।
1: ऐसा है कि जो गाय तो हमारा दूध देती है शुद्ध होता है, दूध से अच्छा चीज कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ज्यादा कमाने ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में उसमें यूरिया, नकली दूध, डिटर्जेंट और पानी, तालाब का पानी, ऐसी चीजों को मिलाते हैं जो कि हानिकारक है और अगर इस पर सावधानी न बरती है तो कैंसर का कारण बन सकती है।
0: तो डॉक्टर साहब इसे जो ना बताओ थे कि भाई मिलावट में हाई हाई चीज होला तो इसे कैसे बचल जाए।
1: इसके बचने के लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं ज्यादातर के आपको तो लैबोरेटरी में सही से पता चलेगा। जैसे अगर दूध में अगर मिलावट है तो आप हाथ के बीच हल्का उसको दबाते हैं तो थोड़ा पतला दिखता है। आप उसको कुछ प्लेन सरफेस पे जो आप गिराते एक बूंद अगर धार बना के जाती है पीछे अपना छाप नहीं छोड़ती है तो मिलावट है, अगर छाप छोड़ती है तो मिलावट नहीं है। और साथ में आयोडीन कुछ बूंदे डालते हैं अगर नीला हो अगर कलर देते तब तो स्टार्च हो सकता है। तो इस तरह से कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं कि हम और भी लैब बेस होते हैं। लैक्टोमीटर हमारा बहुत सस्ता आइटम हम घर पे रख सकते हैं। पानी की मिला लैक्टोमीटर रीडिंग अगर जो होती है वो आपकी अगर चेंज हो जा रही है शुद्ध दूध से अलग आ रही है तो भी आप कह सकते हो कि मिलावट हो सकता है इसमें। तो इस तरह से कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं और हमारे पास साथ में कई सुविधाएं उपलब्ध है गवर्नमेंट की जहाँ पे इसकी जाँच की जा सके।
0: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि दूध में वसा का मिलावट जोन होला तो उसका निर्धारण कैसे हुई।
1: दूध में जनरली गाय की वसा ही होनी चाहिए लेकिन लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें जो है पशु के द्वारा प्राप्त वसा या जो रिफाइन ऑयल वेजिटेबल ऑयल की वसा को मिला के कर देते हैं तो उसको ज्यादा प्रॉफिट। कभी कभी इसके आइसक्रीम बहुत तेजी से बनने में या डेयरी प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज होता है तो इसके भी लोगों को जागरूक करना चाहिए क्योंकि उसमें ट्रांसफैट भी अगर यूज आ जाएगा अपने वसा जो मिलाया है। और दूध का वसा जो होता है अगर उसमें आप बाहरी रूप से कोई अलग से वसा नहीं मिला सकते, अगर आप मिलाते हैं तो वह गलत है।
0: अच्छा एक बात और हम पूछल चाहते नहीं है कि बहुत लोग कहे ना कि गर्म कैला पो में झाग आवेला या ज्यादा झाग आई तो उसे पता चलेला कि मिलावटी दूध है।
1: हाँ अगर दूध में ना एक होता है कि भाई हमने दूध में डिटर्जेंट अगर मिला दिया तो डिटर्जेंट मिला दिया तो आप दूध को अगर जो है लोग कहते हैं ना कुछ गांव की महिलाएं कहती हैं अरे कैसा दूध दे रहे उसमें बढ़िया झाग नहीं मिल रहा है, पड़ोसी के दूध में बढ़िया झाग मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट मिला देंगे और उसको जब आप शेक करते हैं तो झाग आता है। तो इसलिए अगर दूध जरूरत से ज्यादा झाग दे रही है या ऐसा दूध जो जरूरत से ज्यादा चमक रहा है, अलग से सफेदीपन दिख रहा है या आपको उसको देखने में अलग से एक महक आ रही है, इसका मतलब उसमें सिंथेटिक दूध हो सकता है, डिटर्जेंट मिला हो सकता है। तो ऐसे दूधों से ऐसे अगर जहां भी शंका हो तो सावधानी बरतना, उसकी जांच बहुत जरूरी है उपयोग से पहले।
0: अच्छा अगर एक रोके के है का ध्यान रखे के चाहे कि हमारे द्वारा जो दूध परोसल जाता जगह जगह दिहल जाता तो ओमे का लोग सावधानी भी रखे लेवे वाला और दूध देवे वाला भी।
1: ये मैं किसानों भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कई किसान ऐसा नहीं चाहते कि हम गलत चीज दें लेकिन अज्ञानतावश जैसे वह जब गांवों से शहरों में दूध लाते हैं कई किसान पुआल से ढक्कन को ढक के लाते हैं। वो पुआल में क्या होता है कि जो ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पे गर्मी बरसात गंदगी हर जगह खा पी के माइक्रोटॉक्सिन्स बहुत ग्रो कर जाते हैं।
0: अच्छा।
1: अब जब उस पुआल ढक के लाते हैं तो गांव से शहर तक लाने में वो जो है उसमें पूरा माइक्रोटॉक्सिन्स धीरे धीरे दूध में चले जाते हैं।
0: माइक्रोटॉक्सिन्स जो आप कहते हैं क्या कीड़ा है कि क्या है?
1: नहीं ये माइक्रोटॉक्सिन्स हानिकारक चीजें जो भविष्य में जाके हमारे शरीर में कैंसर जैसे घातक रोग रसायन ऐसे है जो कि हमारे जाके शरीर में जो है कैंसर जैसे रोग के कारण बन सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है साफ सुथरे बर्तन से ही इसको ढकना चाहिए। हम चाहे तो मसलिन क्लॉथ यूज कर सकते हैं या लेकिन हमें ऐसे जो पुआल या ये सब चीजों का प्रयोग एकदम से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कई लोग नल के पानी के बदले चूंकि नल का पानी हल्का होता है तो उसमें ऊपर आएगा पकड़ में आ जाएगा लोग तालाब का पानी किसान लोग मिला देते हैं।
0: अच्छा।
1: क्यों नीचे भारी रहेगा तो बल्टा में नीचे बैठा रहेगा तो इसलिए तालाब के पानी को भी कभी नहीं यूज करना चाहिए। वो उसमें फर्टिलाइजर्स यूरिया की गए छड़ होते हैं उसके कारण भारी होता है और वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। ये तो किसानों के लिए हो गया। अगर हम ग्राहक के रूप में सोचे हमको कैसे दूध में शंका है तो हमें तुरंत जो है इस संबंधित विभाग को हेल्पलाइन नंबर एफएसआई फूड सेफ्टी विभाग प्रोवाइड कराती है, उस नंबर पर सूचित करें। अच्छा। अपने एरिया फूड सेफ्टी ऑफिसर को बताएं, यह एफएसआई कनेक्ट ऐप है, उस ऐप के थ्रू हम जाके सूचना दे सकते हैं लोगों को अपनी बात।

0: बातों से बता देना चाहिए।
1: अच्छा, अगर कोई लेत है दूध तो ओके का का सावधानी रखे के चाहिए? जैसे आप कहनी है कि भाई जैसे उसमें शंका होके तो आप FSSAI जो विभाग कहनी है या जो हेल्पलाइन कहनी है ऊपर लोग बताएं, लेकिन लेत समय के का सावधानी रखे के चाहिए? जैसे कि बहुत लोग का करे न कपड़ा में छाने न तो कपड़ा कैसन रहे के चाहिए या छननी से छाने न तो उसमें थोड़ा सा लोगों को बताएं।
0: जब भी दूध छान रहे हैं उस पर सफाई जरूरी है। बहुत जरूरत से ज्यादा मक्खियां निकल रही हैं, बाल निकल रहे हैं, या अजीब सी बदबू आ रही है, या झाग जरूरत से ज्यादा दे रहा है, या सफेदी एक अलग से दिखती है। लोग नकली दूध बना के, नकली दूध लोग सोचते हैं ना, नकली दूध पेंट वेंट मिला के बनाया तो क्या वो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। नकली दूध ऐसे नहीं बिकता है, नकली दूध को असली दूध में मिला के बेचा जाता है। ज्यादा मात्रा असली दूध रखकर नकली दूध को उसमें मिक्स कर देंगे और फिर उससे पनीर खोआ अलग मिठाइयां बना के बेचते हैं। तो जरूरत से ज्यादा जो चीजें सफेद दिखे, आपको अलग से झाग दिखे, अलग से स्मेल दिखे, तो सावधानी तुरंत रखे और तुरंत इसकी सूचना, शंका होने पर अपनी आंखें न मूंदे। और मैं तो इतना तक अनुरोध करूंगा, ज्यादा मिलावट के जो खेल है वो खुले दूध में है, इसलिए पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए कि वो पैकेट बंद दूध का प्रयोग करें। बंद दूध का प्रयोग करने से कम जो ये तो है कि हाँ सावधानियां सब वो नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं और उसके उससे जुड़ी हुई, लेकिन उस पर डेट जरूर देखिए कब
1: अच्छा,
0: पैक किया गया है, कब दूध युद्ध वैधता क्या है, और उस पर लाइसेंस नंबर जरूर होना चाहिए, तभी ऐसे दूध का प्रयोग करना चाहिए।
1: अच्छा मतलब लेबे से पहले हर चीज का जो ऊपर लिखावट है उकर ध्यान देवे के हुई। लेकिन एक और चीज डॉक्टर साहब हम आपसे पूछल चाहब कि बहुत लोग यात्रा करे ना, अब बहुत लोग क्या सब ही यात्रा करेला तो भाई सबके घरे में छोटे छोटे बाल गोपाल लोग हैं तो भाई उकरी बदे वो लोग दूध भी लेके चले ना, तो बहुत लोग क्या करे हैं कि प्लास्टिक चाहे कचकड़ है वो वाला बर्तन में या स्टील की भी बर्तन में, तो उनमें बर्तन का क्या उपयोग रहे कि चाहे कोना बर्तन में वो रखे कि ज्यादा समय तक तो वो दूध ठीक रहो और बच्चा के या केहू के पिए में नुकसान ना दे।
0: नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दूध चाहे ठंडा चाहे गर्म, और गर्म दूध तो एकदम नहीं, प्लास्टिक के बर्तन या कई लोग प्लास्टिक की बोतलों में दूध सप्लाई करते हैं। कई लोग देखते हैं चाय पीते हैं पतले पन्नी में दूध का चाय बना के अपने ऑफिस में मंगा के पीते हैं, इसको तुरंत रोकना चाहिए। जो प्लास्टिक के जो महीन प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो गर्म के साथ कॉन्टेक्ट में आके चाय में या हमारे गर्म दूध में चले जाते हैं, वो बच्चों का दूध नहीं पिला रहे हो, बच्चों का जहर पिला रहे हो। तो प्लास्टिक से रखे हुए सामानों में, चाहे दूध हो, चाहे प्लास्टिक के पन्नी में चाय हो, या इससे कोई भी सामान जो कभी भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, भले हम ना खाएं लेकिन उसको प्रयोग ना करें। इसलिए इस बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और सावधानी ही हमारी जागरूकता बनी है, सावधानी रखिए, यही हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये हमारे आज के समय की जरूरत मांग है।
1: लेकिन एक और बात है कि अगर मान लो कोई मिलावटी दूध पी लेता या उसका उपयोग कर लेता तो कि कौन कौन से बीमारी हो सकेला, तो हमारी किसान भैरों के ये बात से भी सचेत कराएं।
0: देखिए, दूध पीने से पेट में जो गैस की समस्या, बच्चों को दस्त आना, उल्टी होना, और लंबे समय तक मिलावटी दूध पीने से कैंसर जैसी बीमारियां या ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं जो तुरंत पता नहीं चलते, भविष्य में लंबे समय पर उसका निर्माण आता है। पहले हम सब कैंसर वंसर बहुत कम सुन पाते थे या कम लोग ऐसे मरीज मिलते थे, लेकिन आज के समय मिलावट ने अपना ऐसा बाहें खोल ली हैं जिसके कारण चारों तरफ मिलावटी दूध, मिलावटी सामान खाने से आपको जो है काफी बीमारियां फैल रही हैं। तो इसलिए मिलावटी दूध कहीं भी लगे जागरूक बने और हम संकल्प ले लें कि हम मिलावट नहीं करेंगे और अपने सामने नहीं होने देंगे। ये अगर हर किसान भाई संकल्प ले ले तो अपने आज इस मिलावट का अंत किया जा सकता है।
1: तो चला चला तो आप हमारे किसान भाई लोगों के का संदेश दिया चाहे?
0: मेरा संदेश यही है कि सावधानी ही सुरक्षा है। मिलावट से बचने का पहला कदम है जागरूकता। खुद दूध खरीदते समय सतर्क रहे, साधारण परीक्षण जो घर में कर सकते उसको जरूर करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति को तुरंत सूचना दें अपने नजदीकी फूड सेफ्टी ऑफिसर को, या फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल में हर कोई यूज कर सकता है, उस ऐप में आप शिकायत कर दें। और सुरक्षित भोजन ही स्वस्थ समाज की नींव है, इस बात का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार से कम्प्रोमाइज न करें। अगर ये दूध आपके लिए हो सकता है, आप किसी को खिला रहे हो, कल को वो आपके ऊपर भी आ सकता है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचे और खुले दूध का प्रयोग जहां तक हो बंद करें। पैकेट के दूध या बंद पैकेट दूध जो कि कई मापदंडों से पास होकर गुजरता है उसी का प्रयोग करना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है।
1: अच्छा, सरकार की तरफ से एपिन कुछ कहल जाता है या कोनो सूचना है तो आप हमारी किसान बिरोन के दे सकेली?
0: हाँ, सरकार की इस तरफ से सरकार बड़ी जागरूक है, बड़ी सतर्क है, इसके लिए तरह तरह अभियान चलाती है। दीपावली में देखते हैं आप, इतना नकली खोआ, नकली पनीर दूध को पकड़ा जाता है, लंबा अभियान चलाया जाता है, रक्षाबंधन पे भी चलता है। तो सरकार अपना कर्तव्य पूरी तरीके से कर रही है, लेकिन बिना नागरिक के सहयोग के वो अभी सफल नहीं हो सकती, इसलिए नागरिकों को भी आगे

0: करना होगा, ये खाली सोचेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये दूध रूपी राक्षस या मिलावट में दूध में मिलावट रूपी राक्षस को कभी भी आप अंत नहीं कर सकते हैं। इसका अंत करने के लिए सरकार के साथ साथ हमको भी हाथ मिलाना होगा, तभी हम एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना कर पाएंगे जहां मिलावट का कोई भी जगह न रहे।
1: बड़ा निक का जानकारी देनी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर तरुण वर्मा, आप हमने की पंचायती में आईनी, एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुधु भैया, मिलावटी दूध का पहचान कैसे कर जाए, एकरे विषय में देखा कितना नगद का बत कही डॉक्टर तरुण कुमार भैया बतैना है, और बात बत कही कहना अपन सुधीर सतीश कुमार यादव भैया, तो बात बत कही तो अपने पंचायती में हो गल। सुधु भैया आगे का सुनवावत हुआ,
3: आगे तो भाई मनमन शान हुए के चाहिए,
2: बिल्कुल हुए के चाहिए।
3: सरोज वर्मा बहनी के दिखाई सुरठी हो, पंच भैया सुने आनंद ले,

0: भोला भैया
1: हाँ सुंदर भैया।
0: भाई, गाँव नहीं दिखा सरोज वर्मा बहनी को हो गल ना। भाई ढोल मजीरा बन जाला ना तो थकारी मिट जाले
1: मिट
0: कैसे।
1: जाला कहे
0: तीन
1: ना
0: भर के
1: भैया।
0: खेती किसानी और ओकरे बाद जौन हो ओकरे जब गौर नहीं हो जाले तो पूछा मत।
1: ए भैया किसान के का चाहिए, और एक खिलो गीत हो जाला, गीत गाओ नहीं हो जाला तो मन एकदम हरिहर हो जाला।
0: बिल्कुल, तो हम कहें कि अब आज का कार्यक्रम तो हो गल, अब
1: बिल्कुल भैया।
0: काल का सुनवाई बा अपने पंच भैया लोगन को कि बता दा।
1: कल देखा बिहाने 6:05 पे अपने खेती की बातें में भैया विषय रही धान का उन्नत प्रजातियाँ, एकरे बारे में जानकारी दिए अपन दिनेश कुमार सिंह। और सुधु भैया
0: भैया
1: सांझी के अपने कृषि जगत कार्यक्रम में का सुनावत हुआ।
0: भाई सांझी के देखा ये जन खेती बारी बदे के हम यंत्र तंत्र कुल प्रयोग करीला ना,
1: करीला
0: है ना, तकनीकी प्रयोग करीला, तो
1: करीला
0: ये
1: अपन
0: जन कृषि यंत्र हो

0: एकर देखभाल भी करे के जरूरत हो।
1: बिल्कुल भैया,
0: बाकी तो एकर जानकारी होए के चाहिए ना कि कैसे जो देखभाल हुई,
1: देखभाल हुई,
0: यही विषय पर बात कही हुई। हाँ, कि कृषि यंत्रण का देखभाल कैसे करे के चाहिए, इंजीनियर विनोद कुमार सिंह हुआ उनसे बात कही हुई जल। और हम कही कि अब एक साथ चल के बेला होता तो पंचो भैया लोगों से आज्ञा लेवा।
1: बिल्कुल लेवल जाए तो पंचो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत और यह है कार्यक्रम की पहली पेशकश।

त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि ही यारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में

पंडित रविशंकर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे अनजान की रचना। मोहम्मद रफी की आवाज थी, गोदान फिल्म का गाना था। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में रविंद्र जैन की रचना। हेमलता और जसपाल सिंह की आवाजें थी, नदिया के पार फिल्म का गाना था। और इस गीत को आप सुचारू रूप से नहीं सुन सके, जिसका हमें खेद है। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गाना। मन्ना डे और साथियों की आवाजों में तीसरी कसम फिल्म का गाना। शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का ये संगीत।

0: बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे हिंदी वर्ग की रचना। नितिन मुकेश और साधना सरगम की ये आवाज़ें थीं। खुदगर्ज फिल्म का गाना था। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में तीसरी कसम फिल्म का गाना। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जय किशन। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार रंजना पुत्री मुन्ना चौहान निवासनी ग्राम डबहीर थाना अहरावरा जिला मिर्जापुर कहीं खो गई हैं। रंजना के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। वह निकिता सिंह पत्नी सतीश सिंह निवासनी ग्राम जोपा थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर कहीं गुम हो गई हैं। निकिता सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। लापता के समय निकिता सिंह ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। रंजना व निकिता सिंह के बारे में यदि कोई जानकारी हो तो इस पते पर दें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर या निकटतम थाने पर भी सूचित कर सकते हैं। पता एक बार पुनः सुन लें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मिर्जापुर या निकटतम थाने पर भी आप सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकलविहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
7: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
8: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
6: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम

0: 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की

0: में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्योहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से भी मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त किए जाए, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गोसंवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षण

0: आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ढलती शाम की साए में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग। तो रहिए हमारे साथ और सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। यह है कार्यक्रम का पहला गाना। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, रचना समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। फिल्म का नाम शतरंज।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में शतरंज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे आनंद मिलिंद। एक और बहुत प्यारा सा गीत आइए सुने, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें। गीतकार समीर और संगीतकार एक बार फिर आनंद मिलिंद। फिल्म का नाम सनम।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे हसन कमाल की रचना। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी। हातिम ताई फिल्म का ये गाना था। आइए अब सुने राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इब्राहिम अश्क की ये रचना। अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास साथियों की आवाजें हैं। बाहर आने तक का फिल्म का गीत है।

0: बहार आने तक इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास और साथियों की आवाजें थीं, नगमा निगार थे इब्राहिम अश्क और मौसिकी थी राजेश रोशन की। कार्यक्रम का आखिरी गाना हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: जानी बाबू कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में एक कव्वाली सुनते हैं। रचना गौहर कानपुरी की और संगीत दिया है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम दो खिलाड़ी।

ये कव्वाली आप सुन रहे थे, गौहर कानपुरी की रचना थी और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। फिल्म थी दो खिलाड़ी। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ों में अख्तर का ये कलाम।

ढलती शाम के समय में आप है आकाशवाणी वाराणसी संग। आइए सुने शाहिद कबीर का ये कलाम, आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुने निदा फाजली का ये कलाम, आवाजें लता मंगेशकर और जगदीश सिंह की।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे शायर निदा फाजली का ये कलाम। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।

सुमन कल्याणपुर, अनवर और कमलेश अवस्थी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे नसीब फिल्म का ये गाना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम बेटी बेटी, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। तो आइए सुने ये बहुत प्यारा सा गीत। रात्रि के 8:21 और 53 सेकंड।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में भाभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे चित्रगुप्त। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गाना।
1: वो दिल

भरोसा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे रवि। वो कौन थी, आइए इस फिल्म का गीत सुनें।

0: नीला आकाश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार थे मदन मोहन। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर कृष्णा। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, यादगार फिल्म का गाना था। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आइए इस गीत के साथ आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक

0: दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू, भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल, और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ

0: सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया

0: टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंकिस स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल, और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार ओम

0: रिलीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिले ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज है, जो कि मुल्क में फलाह बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: मुख्तलिफ जराए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के दायरे अख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बात कही। अर्जीगुजार का इल्जाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फरोग देने की अहमियत की तौसीख की है, ताकि एक आजाद, खुले, पुरमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल कहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और

अक़वामी क़ानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वज़ारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी ताउन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वज़रा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन। अभी आपने सुना राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज़ों में ये गज़ल। आइए अब सुने राशिद कामिल का ये कलाम, आवाज़ गुलाम अली की।

डॉक्टर बशीर बद्र का ये कलाम आप सुन रहे थे तलत अजीज की आवाज में। अंजुमन कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने मुजफ्फर वारसी का ये कलाम जगजीत सिंह की आवाज में।

0: शायर मुजफ्फर वारसी की ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम मुशायरा।
1: दोस्तों, आज फिर हम एक मुशायरा गजल का लेकर के आपके दरमियान हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आज ये गजल का मुशायरा, जिसमें मोहब्बत की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, आपसी सद्भाव की बात होगी, उसके लिए हमारे दरमियान हिंदुस्तान के मारूफ शुरा तशरीफ़ रखते हैं, जिसमें मिर्ज़ापुर से तशरीफ़ लाए हुए इरफान कुरैशी साहब हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और इसी महफिल में एक बहुत ही जानदार और दमदार और शानदार आवाज़ और कलाम के मालिक जनाब अशफाक अहमद साहब मिर्ज़ापुर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिन्हें शफक मिर्ज़ापुरी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस की वो सरजमीन जिसे ज्ञान की धरती कहा जाता है, इल्म फन की ज़मीन कहा जाता है, उस सरजमीन से तशरीफ़ रखते हैं नसीम अख्तर साहब। बहुत ही अच्छी आवाज़ इनकी है, बहुत ही अच्छा अंदाज़ है, ये भी मोहब्बत की बात करेंगे। दोस्तों, आइए इस मुशायरे का आगाज़ हम अपने मेहमान शायर जो मिर्ज़ापुर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, शफक मिर्ज़ापुरी।

0: साहब बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं। इन चार मिसरों के साथ मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि खुशगुलू हो तो तरन्नुम से गजल पेश करो, दर्दमंदों को तबस्सुम से गजल पेश करो, मीर का दर्द हो गालिब की तड़प हो जिसमें तुम उसी तर्ज तकल्लुम से गजल पेश करो। शफक मिर्जापुरी साहब अपने कलाम के साथ।
1: शामीन हजरात, गजल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं।
0: बताओ।

0: अरे वाह, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा शफ़ा
1: कितने दरिया समंदर की तश्नगी के लिए।
0: अच्छा निभाया है भाई, बहुत खूब।
1: कुछ उसने ऐसा दिया वास्ता मोहब्बत का,
0: अच्छा मिश्रा है।
1: कुछ उसने ऐसा दिया वास्ता मोहब्बत का, मुझे बढ़ाना पड़ा हाथ दोस्ती।
0: अरे वाह, क्या खूबसूरत शेर है भाई।
1: मुझे बढ़ाना पड़ा हाथ दोस्ती के लिए।
0: हाँ हाँ हाँ।

0: दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से अपना कलाम सुना रहे थे हमारे शफक मिर्ज़ा पुरी साहब। आवाज़ भी अच्छी है, अंदाज भी अच्छा, कलाम भी बेहतरीन उन्होंने इंतखाब किया। दोस्तों हमारे बीच में बनारस की एक हस्ती है, ये सरजमीन नज़ीर बनारसी के नाम से भी जानी जाती है। ये सरजमीन जो है रियाज बनारसी के नाम से भी मनसूब है और इस बनारस को लोग निज़ाम बनारसी के नाम से भी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन एक शख्सियत नसीम अख्तर साहब की है, बहुत अच्छे अंदाज में वो अपना कलाम पढ़ते हैं और बेहतरीन कलाम आप उनका समाअत फरमाएं। नसीम अख्तर माइक पर अपने कलाम के साथ।
1: ग़ज़ल का मतलब चंद शेर फरमाएं।

0: क्या अच्छा मतला छेड़ा है।
1: हाँ तू ही तू मेरी गजल में है।
0: बहुत
1: शेर
0: अच्छा।
1: मुलाजा
0: हाँ
1: फरमाया।
0: हाँ बताओ बताओ।

0: सब ख्यालों में डूब जाते हैं,
1: सब सब ख्यालों

और मुक्ता मुरादा फरमाए। इसमें काफिया है करबयाहू, मेरी गजल में है करबयाहू, एक खूबसूरत हिरन का वो से वाबस्ता है। मुलादा फरमाए, हाँ तू ही तू मेरी

0: और
1: बहुत अच्छे नसीम अख्तर साहब बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बेहतरीन गजल पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों, हम उस शहर की जानिब, उस जिले की जानिब चल रहे हैं जो विंध की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसे मिर्जापुर कहते हैं। वहाँ किसी जमाने में अनवर मिर्जापुरी ने अपना झंडा गाड़ रखता था मुशायरों में। जफर गाजीपुरी जैसे उस्ताद शोरा वहाँ पे मौजूद हैं, मोहिम मिर्जापुरी जैसे लोग आज मुशायरों में नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसी जमीन से तशरीफ लाए हुए हमारे इरफान कुरैशी साहब हैं। मैं चाहता हूँ कि बेहतरीन कलाम उनका भी सुना जाए अपने कलाम के साथ वो माइक पर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब कौन करेगा हम सुखनवरों की कद्र, अब कौन करेगा हम सुखनवरों की कद्र, नहीं रहे हम सब के डॉक्टर बशीर बद्र, नहीं रहे हम सब के डॉक्टर बशीर बद्र। शेर ये देखें कि हमने देखा सुना और पढ़ा भी है, हमने देखा सुना और पढ़ा भी है, अदबी महफिल के होते थे ये सदर, अदबी महफिल के होते थे ये सदर। और देखिए कि हिंदी अंग्रेजी और उर्दू के ये संगम,
1: अच्छा
2: हिंदी अंग्रेजी और उर्दू के ये संगम, ऐसे नहीं करती थी दुनिया इनकी कद्र।
1: वाह भाई वाह।
2: हिंदी अंग्रेजी और उर्दू के ये संगम, ऐसे नहीं करती थी दुनिया इनकी कद्र। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को छोड़ो,
0: मंदिर मस्जिद
2: गुरुद्वारा को छोड़ो, जीते जी कर लो अपने माँ बाप की कद्र। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को छोड़ो, जीते जी कर लो अपने माँ बाप की कद्र। और एक गजल देखने छोटी सी आप
1: पढ़ते रहिए।
2: कई राज में ये भी एक राज है,
1: कई राज में ये भी एक राज है।
2: बशीर को बुलाया ताहिर फराज है,
0: क्या
2: कई राज में ये भी एक राज है, बशीर को बुलाया ताहिर फराज है, सच्चे इंसान की तरह हक अदा कर गए, सच्चे इंसान की तरह हक अदा कर गए, कोई सरे फेरिस्त तो कोई सरफराज है।
1: वाह भाई
2: सच्चे इंसान की तरह हक अदा कर गए, कोई सरे फेरिस्त तो कोई सरफराज है। और ये शेर देखिए कि कभी दौर था राहत मुनव्वर अनवर का,
1: कभी दौर था राहत मुनव्वर अनवर का,
2: जिसे देखो वही आज लगता उम्र दराज है, जिसे देखो वही आज लगता उम्र दराज है। और ये शेर देखिए कि सिमट कर रह गई दुनिया सिर्फ एक मोबाइल में,
1: सिमट कर रह गई दुनिया सिर्फ मोबाइल में,
2: ना वो घड़ी रही ना वो कोई घड़ी साज है,
0: ना कोई घड़ी साज है।
2: और शेर देखें कि बेशक तालीम हासिल करो दिल

0: खोल कर। बेशक तालीम हासिल करो दिल खोल कर, मगर दुश्मन न बनाओ जो तुम्हारा हमराज है। बेशक तालीम हासिल करो दिल खोल कर, मगर दुश्मन न बनाओ जो तुम्हारा हमराज है। और ये शेर देखिए कि हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग रहते हैं,
1: हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग रहते हैं,
0: हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग रहते हैं, कोई बंदा तो कोई बंदा नवाज है।
2: वाह भाई, वाह भाई, अच्छा।
0: हमारे
2: अच्छा।
0: मुल्क में ऐसे भी लोग रहते हैं, कोई बंदा तो कोई बंदा नवाज है। और ये शेर देखिए कि हर हाल में अदा करो शुक्र खुदा का, हर हाल में अदा करो शुक्र खुदा का, वो बड़ा रहीम और बड़ा कारसाज है,
2: बड़ा कारसाज है, सही।
0: वो बड़ा रहीम, वो बड़ा कारसाज है, कई राज में ये भी एक राज है, बशीर को बुलाया ताहिर फराज।
2: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इरफान कुरैशी साहब। दोस्तों, हमारा हमारी कश्ती जो है साहिल के करीब है, हमारा कारवां जो है एकदम मंजिल के करीब आ गया है। एक जिम्मेदारी नाज़िम मुशायरा की मुझे दी गई थी, समर गाजीपुरी के नाम से मुशायरों में जाना जाता है, वैसे मोहम्मद मुस्लिम सिद्दीकी आधार पर मेरा है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे यहाँ के लोगों ने भी समझी कि नहीं, मिर्ज़ापुर से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल और नसीम अख्तर जैसे लोगों का शेर सुनने का और सुनाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, और इसको पेश करने के लिए क्यों ना समर गाजीपुरी की खिदमत ली जाए। मैं बहुत मशहूर हूँ इस डिपार्टमेंट का भी, यहाँ के तमाम लोगों का और आप दोस्तों का भी। दोस्तों, एक जिक्र किया इरफान ने कि बशीर बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र साहब की बहुत बड़ी शख्सियत थी, और उन्होंने उर्दू गजल में जो एक नया गोशा तलाशा, जिस ढंग से उन्होंने अपनी शायरी की, वो एक मील के पत्थर की तरह से है, और मोहब्बत की बात उन्होंने की, और ज्यादातर अपनी शायरी में फूल, तितली और चांद, समंदर, इन सबों के इशारे से उन्होंने बात की, लेकिन सारी बात का जो केंद्र बिंदु था, जो मरकज था, वो मोहब्बत थे, और हम मोहब्बत का ही पैगाम देते आ रहे हैं, चाहे गजल में दे, चाहे अपने कलाम में दे। ये चार मिसरे आप समाप्त करें नसीम अख्तर साहब की, मोहब्बत में दिल तो मचलता बहुत है, मोहब्बत में दिल तो मचलता बहुत है, कोई मुझको चाहे तमन्ना बहुत है, मोहब्बत में दिल तो मचलता बहुत है, कोई मुझको चाहे तमन्ना बहुत है, ये माना मोहब्बत में धोखा है फिर भी मजा इश्क करने में आता बहुत है, ये माना मोहब्बत में धोखा है फिर भी मजा इश्क करने में आता बहुत है। और इसी मुनासिबत से ये चार मिसरे और ले लें आपके, जिंदगी में प्यार करना चाहिए, क्या बात, जिंदगी में
1: प्यार करना चाहिए,
2: प्यार करना चाहिए कम से कम एक बार करना चाहिए,
0: वाह वाह,
2: जिंदगी में प्यार करना चाहिए कम से कम एक बार करना चाहिए, रात दिन तड़पे किसी के वास्ते, दिल को भी बीमार करना चाहिए, रात दिन तड़पे किसी के वास्ते, दिल को भी बीमार करना चाहिए। और इसी तसलसल के और शेर आप सुन लें कि दिल अगर इश्क में बीमार नहीं हो सकता, दिल अगर इश्क में बीमार नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए फिर प्यार नहीं हो सकता, दिल अगर इश्क में बीमार नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए फिर प्यार नहीं हो सकता, आपके नाम की तावीज पहन रखी है, आपके नाम की तावीज पहन रखी है, अब कोई और मेरा यार नहीं हो सकता, अब कोई और मेरा यार नहीं हो सकता। और गजल के दो तीन शेर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ वक्त है, कि एक मतलब बड़ा ही खूबसूरत है इरफान भाई कि सबूत पुख्ता तो मोहकल दलील रखते हैं, सबूत पुख्ता तो मोहकम दलील रखते हैं, जो अच्छे लोग हैं अच्छा वकील लगते हैं, सबूत
1: क्या बात,
2: पुख्ता तो मोहकम दलील रखते हैं,
1: क्या बात है भाई,
2: जो अच्छे लोग हैं अच्छा वकील रखते हैं, अकड़ के बाद जो करता है बाप भाई से,
1: क्या बात है,
2: अकड़ के बाद जो करता है बाप भाई से, अकड़ के बाद जो करते हैं बाप भाई से, वो लोग दोस्त भी अक्सर जलील रखते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: वो लोग दोस्त भी अक्सर जलील

0: रखते हैं। वो लोग दोस्त भी अक्सर जलील रखते हैं, और तुम्हारे रिस्क में शामिल किसी का रिस्क भी है।
1: क्या बात है,
2: तुम्हारे रिस्क में शामिल किसी का,
0: यह तारीखी शेर है कि तुम्हारे रिस्क में शामिल किसी का रिस्क भी है। ये गौर व फिक्र भला कब बखील रखते हैं, ये गौर व फिक्र।

0: शेर सुने आपके, किसी की दर्द बयानी से भर गई आंखें,
1: जी किसी के दर्द
0: किसी की दर्द बयानी से भर गई आंखें, हम अपने सीने के अंदर भी झील रखते हैं। किसी की दर्द बयानी से भर गई आंखें, हम अपने सीने के अंदर भी झील रखते हैं। और एक शेर इसमें और है कि कहां से मंजिले मकसूद तक वो पहुंचेंगे
1: जी,
0: कहां से मंजिले मकसूद तक वो पहुंचेंगे, नजर में जो भी समर संगे मील रखते हैं, नजर में जो भी समर संगे मील रखते हैं,
2: क्या बात है,
0: सबूत पुख्ता तो मुहकम दलील रखते हैं, जो अच्छे लोग हैं अच्छा वकील रखते हैं। दोस्तों आज की ये महफिल बहुत कामयाब रही, हमारे मेहमान शोरा ने भी बहुत अच्छे शेर सुनाए, हमारे नसीम अख्तर साहब ने भी महफिल को लूटने काम किया। नाज़रीन हज़रात, फिर आपसे किसी न किसी मौके पर एक मुलाकात होगी और फिर ये शोरा आपके सामने होंगे। नसीम अख्तर साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं जो बनारस के हैं, इरफान कुरैशी साहब हैं जो मिर्ज़ापुर से तशरीफ लाए हैं, अशफाक अहमद साहब जो शफक मिर्ज़ापुरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस बज़्म में शिरकत करके बेहतरीन कलाम पेश किया। और मैं नाज़िम मुशायरा समर गाज़ीपुरी, जिसे मोहम्मद मुस्लिम सिद्दीकी के नाम से लोग भी जानते हैं, मैं और मैं चाहता हूं कि बहुत बहुत मुबारकबाद अच्छे पढ़ने वालों का भी और अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को सुनने वालों का भी। नाज़िम हज़रात, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, फिर आपसे मुलाकात हो।
3: अभी आप सुन रहे थे ये मुशायरा, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है, रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया राग मारू बिहाग। आपके साथ तबले पर संगत की है पंडित विभव नागेशकर ने, व तानपुरा पर मदन बोंगले और केतकी बापट।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया राग मारू बिहाग। आइए आपसे ही सुनते हैं संतूर पर बजाई मिश्र खमाज में ये धुन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का संतूर बजाई मिश्र खमाज में ये धुन। आपके साथ तबले पर संगत की थी पंडित विभव नागेशकरनी, तानपुरा पर थे मदन बोंगले और केतकी बापट। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न

0: क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The president said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that